0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
3: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
4: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
5: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242.
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
8: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
9: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
10: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
9: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
10: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
6: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
11: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
12: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
14: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमनी। आज हमने बहुत सारी बातें की कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, और लाज नहीं आनी चाहिए जब आप कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जब किसी को दे रहे होते हैं या फिर रिसीव कर रहे होते हैं तो लाज इज नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। आप दिल खोल के कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। और अभी अभी सुरोमा जी का फोन आया था, उन्होंने बोला है कि उनको ना लोग ऐसे काफी कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। मतलब आपको पता नहीं यार, लड़कियों के ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई बोलता है और आपके मन में ऐसा चलता है कि त्वचा कुछ और निखरे, संतूर संतूर। मतलब आप संतूर मम्मी है एंड शी इज द वन, लाइक उनका उनकी जो डॉटर है वो 24 इयर्स ओल्ड है और अभी भी उन्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो इट फील्स ग्रेट। और ऐसा ही कुछ कॉम्प्लीमेंट देना, हर किसी के लिए देना और लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि मम्मी को पता है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनको बताने की क्या ज़रूरत है, या फ्रेंड्स को पता है कि वो इंपॉर्टेंट है, इतनी बार तो हम बातें करते हैं, या फिर आपके कलीग को पता है कि उसने अच्छा काम किया है। लेकिन पता होना और अपने मुंह से सुनाना दो अलग बात है, फीलिंग भी बिल्कुल अलग होती है। तो आज का सिंपल रिमाइंडर ये है कि अगर आप किसी को किसी की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, उसको अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ना चार चांद और लग जाएंगे। तो डू लेट दी अदर पर्सन नो कि आपको उनमें क्या अच्छा लग रहा है। एंड विद दिस वी आर क्लोजिंग द सेगमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन गाने अच्छे अच्छे बजते रहेंगे, गिव अवेज और बहुत सारा फन एंड ड्रामा अभी बाकी है। तो कीप लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड विद फनेशियर रेडियो।

आज हमने बहुत सारी बातें की कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, और कोई है जिसे मैं बहुत बार जो है कॉम्प्लीमेंट देती रहती हूँ, अक्सर वहां पे जाती हूँ और उनके शेफ्स को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, एंड दैट्स पेज 3 ईटरी फॉर योर गाइज। और वहां का जो कबाब है वो तो इतना अमेजिंग है, और जो चाट फ्यूजन्स हैं वो भी कमाल के हैं, मतलब लखनवी अंदाज और कुछ स्पेशल है। अगर मेन्यू में अगर आप वहां पे जाएंगे और पूछेंगे कि यहाँ का स्पेशल क्या है, तो दो चार चीज़ें वो बताते हैं, वो तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर अभी तक आप नहीं गए हैं पेज 3 ईटरी, जो कि लोकेटेड है एट हब 121, तो आप सीरियसली ना अच्छा खाना मिस कर रहे हैं यार। कमाल का खाना है यहाँ पे, आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना इंडियन स्ट्रीट फूड मिलता है मॉडर्न फ्लेवर से। और जो वाइब की बात करें तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आप फन एशिया में ही बैठे हो और वहाँ पे खा रहे हो, क्योंकि गाने भी एकदम अमेजिंग से बजते रहते हैं लगातार, एकदम फन एशिया के फेवरेट्स वैसा ही है आपको। तो अगर आप जाना चाहें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अगर आप डेट पे जाना चाहें तो भी इट्स अ गुड स्पॉट गाइज। आप ब्रंच पे भी जा सकते हैं, लंच पे भी, और अभी तो डिनर का भी टाइम हो रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बाहर जाके कहाँ खाऊं, तो दिस इज द राइट प्लेस, पेज 3 ईटरी आप जरूर जाएं। और वक्त हो गया है गिव अवे का, लेकिन थोड़ी गाने आप जरूर इंजॉय कर ले, फिर हम आएंगे अमेजिंग सा गिव अवे लेके आपके लिए।

0: वैसे ये प्रिटी वुमन कुछ अमेजिंग सा लेके आई है फॉर टेक्सास बिजनेस ओनर्स. अगर आपको एक स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन चाहिए तो आप तारा कमर्शियल एनर्जी से जरूर रीच आउट कीजिए, क्योंकि वो ना टेक्सास बिजनेसेस की हेल्प करते आए हैं सिंस 2002. उनके रेट्स काफी कॉम्पिटिटिव हैं, सर्विस काफी रिलायबल है, और जो एनर्जी प्लान्स हैं वो भी कस्टमाइज्ड है, मतलब आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली वो बने हुए हैं. आप उन्हें कॉल कर सकते हैं एट 844-428-2808, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज taraenergy.com. और अभी वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आएगा आपके लिए अमेजिंग सा गिव अवे. और ये एक स्पेशल गिव अवे है, मतलब मुझे पता है कि कुछ गिव अवेज के लिए ना मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और उन्हीं में से है फन पिज्जा किचन का गिव अवे. तो आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं, तो आई विल वेट फॉर द ब्रेक. आपको क्वेश्चन भी ब्रेक के उस पार मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन ना आज के डेट के आसपास है. आप सोचो आज क्या स्पेशल है, कौन से बॉलीवुड मूवी में क्या हुआ था इस पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग, और हो सकता है कि अगर हमने फटाफट कॉल किया तो आप विनर बन सकते हैं भाई, आपको फन पिज्जा किचन का गिव अवे मिल सकता है.
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं.
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं.
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं.
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
5: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है.
6: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
5: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
6: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है.
6: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
7: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
9: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
8: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: We need to talk.
12: अब क्या हुआ?
11: Nothing. It's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
10: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th.
13: limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हम खेलेंगे अपना गिव अवे राउंड, और ये गिव अवे है फ्रॉम फन पिज्जा किचन। और बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मतलब हर बार जब ने भी ना मैंने फन पिज्जा किचन का गिव अवे किया है तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं, क्योंकि इनके पिज्जाज हैं ही अमेजिंग। मतलब फुल नॉन फ्लेवर फिएस्टा कह सकते हैं इनको। यहाँ पे आपको मिलेगा फेरी पोलो लोको, फिएस्टा वेजी, सी फूड पैक्ड सनोर कैमरॉन और बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फ्लेवर्स एंड डिशेस और पिज्जाज। ठीक है, तो आपको ना मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब देना है और आपको मिल जाएगा $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। तैयार हो जाइए, सवाल आज के डेट के ही आसपास का है। आज क्या है? September 5th। और September 5th को 3 Idiots मूवी का, मतलब उसमें कुछ हुआ था, एक स्पेशल सीन है, एक सिग्निफिकेंस है इस डेट का इन दैट मूवी, और आपको मुझे फोन करके बताना है कि वो क्या सीन है और वाई इज दिस डेट इंपॉर्टेंट इन दैट मूवी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं एट 972-235-5555 पे। ओके, 3 Idiots एंड September 5, कुछ याद आ रहा है आपको?

हमें आज के लकी विनर मिल गए हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कॉलिंग. और ट्रस्ट मी, बहुत सारे कॉल्स. आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस. मतलब आपको एकदम सीन बाय सीन याद था. मैंने आपसे पूछा था कि आज के डेट और थ्री इडियट्स मूवी में क्या कॉमन है, क्यों स्पेशल है, क्यों सिग्निफिकेंट है आज का डेट. तो सबने बताया कि वो चतुर जो है एक एम्बैरेसिंग सा स्पीच दे देता है जिसका मतलब वो नहीं समझता, क्योंकि वो ऐसे रटाफिकेशन में बिलीव करता है कि मैं सब ऐसे याद करके बस बोल दूंगा. और फिर बाद में रैंच और उसके दो दोस्त फरहाद और राजू ऊपर जो है पार्टी कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं उसको लेके. तो वो ऐसा पूरा दारू वारू पी के आता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया. और वो डेट लिखता है वहां पे वॉल पे, सितंबर 5 की कुछ सालों बाद जो है हम मिलेंगे और देखेंगे कौन कितना आगे निकला है लाइफ में, किसने कितना अचीव किया है, तब बात करेंगे. ठीक है, बहुत ही फ्यूरियस रहता है. सो ये सीन है, काफी पॉपुलर सीन है. बहुत सारे लोगों ने कॉल किया और हमने जो है आज का विनर चूज कर लिया है, एंड दैट इज तरुण. तरुण, कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. और आप जाइए वहां के अमेजिंग पिज्जा एंजॉय कीजिए. और अगर बाकी लोग भी जाना चाहते हैं तो यार कोई नहीं, थैंक यू सो मच. मतलब आपके स्पिरिट ऑफ जो गेम का स्पिरिट है ना, वो आपने बनाए रखा, एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट. बट अगर आप जीत नहीं है तो क्या है, आप फ्रेस्को में जा ही सकते हैं, फन पिज्जा किचन एंजॉय कर ही सकते हैं. वहां के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे ऑन द वेबसाइट funpizzakitchen.com. तो डू चेकआउट देयर मेन्यू, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स, एंड या वी आर क्लोजिंग दिस गिव अवे. लेकिन अभी बहुत सारा धमाल, बहुत सारी मस्ती अभी बाकी है. सो स्टे ट्यून्ड.

भाई गणेश चतुर्थी आ रही है। आई थिंक इस बार सितंबर 14 को है वो गणेश चतुर्थी। और उसके लिए ना फन एशिया जो है एक स्पेशल अरेंजमेंट करके लेके आए हैं। एक वर्कशॉप हो रही है जहाँ पे वो आपको क्ले से जो है गणेश आइडल बनाना सिखाएंगे। और अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं जहाँ पे वो ट्रेडिशन से भी जुड़े रहे, उनका मन भी लगा रहे और कुछ वो एक नया स्किल सीखे, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये फन एशिया के कनेक्ट करा रहा है अलॉन्ग विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर और इंश्योर होम लोन्स और उमर ख्वाजा। ये सारे स्पॉन्सर्स हैं हमारे जो कि ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्कशॉप। और यहाँ पे ना आप अपने जो बच्चे हैं, अगर 5 to 12 years के रेंज में आपके बच्चे हैं तो आप उनको जरूर लेके आएं। सितंबर 12 को हो रहा है ये वर्कशॉप सैटरडे को, और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी ऑन आर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, सारे जगह पे अवेलेबल है, आप वहां पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। लेकिन स्पॉट्स जो है थोड़े कम लिमिटेड है, तो जल्दी फटाफट एकदम से रजिस्टर कर दीजिए। और फन एशिया इंश्योर करेगा कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो लिटिल लिटिल आर्टिस्ट है उनकी क्रिएटिविटी बाहर आए, साथ ही साथ वो रूट्स अपने ट्रेडिशंस वगैरह से भी कनेक्टेड रहें और इस पूरे फेस्टिवल को एंजॉय करें। और काफी एक्साइटिंग होगा, आई थिंक दे विल नॉट फॉरगेट दिस मोमेंट। और एक बार जब वो क्ले से आइडल्स वगैरह बनाना सीख जाए देन दे कैन डू इट एट होम एज वेल, राइट? तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डू रजिस्टर योर सेल्फ और अपने बच्चे को रजिस्टर करें। और गणेश चतुर्थी की बातें हो रही हैं और एक मेरा फेवरेट गाना है जो बप्पा को डेडिकेटेड है। आई होप यू गाइज लाइक इट।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
10: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: 90s ke gaane sirf hits nahi, hamari yaadein hain. Aur ab wo legendary aawaz aa rahi hai live to Plano. वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया, कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो, लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड रीट ऑप्शंस अवेलेबल, टिकट्स एट eventbrite.com, मोर इन्फो 2148692668, प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

No, राधा इज नॉट ऑन द डांस फ्लोर, राधा इज ऑन रेडियो. जी नहीं, मेरा नाम राधा नहीं है, मेरा नाम है सिमी, आपकी अपनी आरजे सिमी, और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM. एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजे फिनटेक्स. और ये ना बहुत सारे अमेजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं, आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं. यहाँ आपको मिल जाएगा टैक्स, अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग, एज वेल एज बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या फिर अगर आपका छोटा बड़ा, जैसा भी वेल स्टैब्लिश्ड, जैसा भी बिजनेस है, हर टाइप के सर्विसेज इनके पास ऑफर किए जाते हैं. और अगर आपको चाहिए इनमें से कोई सर्विसेज, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर समवन हु कैन हेल्प यू विद सम फाइनेंशियल नॉलेज एंड सर्विसेज, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं. दे आर एजे फिनटेक्स, और आप उन्हें कॉल कीजिए 4699429888, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज agefintax.com. और वक्त हो रहा है एक और गिव अवे राउंड का, बस कुछ सॉन्ग्स एंजॉय कीजिए, फिर लेके आते हैं आपका गिव अवे राउंड.

नाउ इट्स टाइम फॉर डक टाइम. जी हाँ, हम लेके आ गए हैं अपना गिव अवे राउंड, और ये अगर आप जीतते हैं तो आपको मिलेगा डक टाइम की तरफ से आपको जो है एक सर्विस या फिर ड्राइव वेंट क्लीनिंग फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. और डक टाइम जो है ना अपना पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है डैलस में, तो और बहुत अमेजिंग इनकी सर्विसेज रहती हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल डक्ट क्लीनिंग होती हैं. और आपको रियलाइज नहीं होगा लेकिन आपके डक्ट्स वगैरह में ना बहुत ज्यादा जो है डस्ट क्लॉग हो जाता है, क्लियर नहीं होते वेंट्स और एयर फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है उससे, जिसके कारण एक हिडन फायर हजार्ड भी होता है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, लेकिन एक हिडन फायर हजार्ड भी होता है. तो जरूरी है कि आप जो है रेगुलर डक्ट क्लीनिंग कराते रहे अपने घरों में. तो अगर आपको ऐसी सर्विसेज चाहिए तो आप जीतू पटेल को कॉल कर सकते हैं. उनका नंबर है 972-877-2500. आई रिपीट द नंबर, इट्स 972-877-2500. या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे और आप उनके उनसे जो है सर्विसेज के लिए जो भी चार्जेस वगैरह आप भी पूछ सकते हैं उनसे. तो इट्स टाइम फॉर द गिव अवे. और अभी हम एक सॉन्ग बजा रहे थे, अभी मुझ में कहीं बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग था और आपको मुझे बताना है कि इसमें जो है सिंगर कौन थे, किस मूवी का है ये और किस एक्टर पे फिल्म आया गया है. आई विल रिपीट द क्वेश्चन, आपको बताना है सिंगर का नाम, एक्टर का नाम एज वेल एज मूवी का नाम. द सॉन्ग वॉज अभी मुझ में कहीं. ओके, नंबर है 972-235-5555. तो आप बिल्कुल मुझे कॉल करके बताइए और जीत लीजिए यार ये गिव अवे राउंड.

वक्त हो गया है कि हम आज का लकी विनर अनाउंस करें, और हमने आपसे पूछा था कि ये जो सॉन्ग है अभी मुझ में कहीं, वो किस सिंगर ने गाया है, किस एक्टर पे फिल्माया गया है और किस मूवी का था वो। तो जो सिंगर है वो सोनू निगम है, उनकी वॉइस से ही पता चल जाता है, आई नो कि वेरी इजी दैट वाज। और जो मूवी है वो अग्निपथ है, और जो एक्टर है वो ऋतिक रोशन है, और आज की हमारी लकी विनर जो है वो शिवानी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवानी, आपको मिलता है डक टाइम की तरफ से ड्राई वेंट क्लीनिंग सर्विसेज। और बाकी लोग, बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया था, आई थिंक प्रियंका, मिहिर और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं अभी भूल रही हूँ, सबके जवाब बिल्कुल सही थे, काफी जल्दी कॉल्स आए, और लकी विनर तो एक ही हो सकता है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर लीजिए। आपको दूसरे गिव अवेज, दूसरे शोज में भी ट्राई कीजिए, आपको जरूर चांस मिलेगा लकी विनर बनने का। और अगर आप डक टाइम के लिए ये गिव अवे खेल रहे थे, अगर आपको उनसे डक क्लीनिंग सर्विसेज लेनी है, तो आप जीतू पटेल को कॉल कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड मीनवाइल सोनू निगम का एक और सॉन्ग हो जाएगा इस।

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: हेलो,
3: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है।
2: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
1: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
4: ये तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
0: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: मधम मधम तेरी गीली हंसी।

यार सोनू निगम की आवाज दिल को छू जाती है, इतनी मैजिकल उनकी वॉइस है। और हम डैलस वालों के लिए तो बहुत ही खास मौका है क्योंकि सोनू निगम खुद आ रहे हैं भाई। लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है उनका, जिसका नाम है रिवोल्यूशन उनके शो का, और ये हो रहा है सितंबर 26 को एट 8:30 PM एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। टिकट्स अवेलेबल हैं टिकट मास्टर पे, और अगर आपको और भी ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए प्राइसेस वगैरह के तो आप कॉल कर सकते हैं एट 8555360 और शोज ओके। और सोनू निगम, ओ माय गॉड, मतलब ये मौका तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, जरूर जाए और उनकी वॉइस को जो है लाइव एक्सपीरियंस करें। एंड आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द शो। दिस इज आरजे सिमी एंड यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM।

देखिए सैटरडे है और डिस्को दीवाने होना बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल डिस्को में जाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आपने ड्रिंक किया है तो फिर घर वापस आने के लिए आप किसी और को बोलिए कि वो ड्राइव करे, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव अच्छी बात नहीं है। कई बार हम तो सावधान होते हैं, लेकिन हमारे जो आगे या पीछे ड्राइव कर रहे होते हैं वो उतने केयरफुल नहीं होते, और जिस कारण कई बार अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, स्लिप या फॉल एक्सीडेंट हो, बहुत सारे ऐसे रेगुलर केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी अनफॉर्चुनेटली हो जाता है या आपके किसी एक्वेंटेंस के साथ, तो आप अटर्नी उमर ख्वाजा को रीच आउट करें, क्योंकि ये आपकी काफी मदद करेंगे। आप ना फोकस कीजिए हीलिंग पे कि भैया आप तो वापस से अपने रेगुलर लाइफ में जितनी जल्दी वापस जा सके आफ्टर द एक्सीडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करें, और ये सब जो बाकी टेंशन है ना इंश्योरेंस की और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, वो अटर्नी उमर ख्वाजा और उनकी टीम देख लेंगे, और आपको तब तक पे नहीं करना जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते। तो अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है तो आप उनका नंबर लिख लीजिए, द नंबर इज 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज attorneyomar.com।

देखो रफ्ता रफ्ता तो मेरे भी जाने का वक्त अब करीब आ रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको बता देना चाहती हूँ। अक्सर ना हमें ऐसा देख के लगता है कि यार ये सामने वाला तो काफी फिट है, या फिर मैं तो पक्का से पूरी तरह से फिट हूँ, मुझे कुछ फीवर वगैरह ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है जिसके कारण कि मुझे लगता है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, कई बार हमें फिजिकल चेकअप कराने के बाद ही पता चलता है कि अगर कुछ बीमारी वगैरह निकले, और बहुत जरूरी है कि वो रेगुलरली आप कराते रहें ताकि अगर कुछ निकले भी तो आपके पास इनफ टाइम हो कि आप उसका जो है ट्रीटमेंट वगैरह करा के आप वापस से फिट एंड फाट हो सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास आप सोच रहे हो कि कहाँ जाना है ये एनुअल चेकअप वगैरह ये सब कराने के लिए, तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज डेफिनेटली अ गुड स्टॉप और सोल्यूशन। और अगर ये आपके इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, या फिर आपके पास इंश्योरेंस है ही नहीं, समझ लो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अगर कवर्ड नहीं है, तो भी ये एक प्रोग्राम लेके आए हैं, दैट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट। और ये ऑफर हो रहा है आपको $85 अ मंथ में, जो कि इंक्लूड करता है प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ, और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आपको पता चलेगा जब आप उन्हें कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे एट 214-666-6259, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज passionhealthphysician.com। ये जो प्रोग्राम है ये कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर दूं, और इसमें कुछ एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो आप उनको कॉल या उनसे कॉन्टैक्ट करके पता कर लें।

देखिए लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया है, अभी बहुत सारी मस्ती धड़ाका करनी है और इस लॉन्ग वीकेंड पे वीकेंड बफे भी चालू हो गया है एट द फ्लेवर लाउंज और यहाँ मिलेंगे आपको डिलिशियस डिशेस, लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल और ये सब कुछ ओनली एट $24.99 पर पर्सन। आप सैटरडे और संडे जा सकते हैं 12 से 3 बजे, ये जो है लंच बुफे मिलता रहता है वहाँ पे और जो एड्रेस है इट्स 5855 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को में। तो जरूर जाएं फ्लेवर लाउंज जहां आपको मिलेगा गुड फूड एंड गुड मेमोरीज।

एंड विद दिस आरजे सिम्मी विल बी साइनिंग ऑफ. मैं मिलूंगी आपसे अगले सैटरडे. मेरा शो का टाइमिंग होता है 6 बजे से 9 बजे तक, तो 9 बस बजने ही वाला है और मैं जाती हूँ. तो लेकिन आपको छोड़े जाती हूँ एक अमेजिंग सॉन्ग के साथ, तो डू एंजॉय. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट टेक केयर, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो टेक केयर एंड गुड नाइट. ओके गाइज, बाय.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
3: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
2: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
3: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
10: इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो।
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
14: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
18: तुमसे मिलके दिल का है।
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
19: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Club Fanasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत यही।

ताई चलते प्यार सोनिए ताई चलते प्यार ऐसा नहीं चलते।

0: Variety is the spice of our station. Yeah, 104.9 FM.
1: Don't miss out on the dance party of the year. Join the Club Phanasia Revolution and let the good times roll.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Phanasia.
3: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
7: तुमसे मिलके दिल का है.
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: मैं हूं उमर शरीफ और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं फनेशिया।
1: Don't miss out on the dance party of the year. Join the club Phanasia Revolution and let the good times roll.

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: बेटा, 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

0: solution and let the good times roll.
1: नी तेरा सूट भी हाई नी तेरी साड़ी भी हाई नी तेरा लहंगा तेरी ड्रेस ते तेरा कोका

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
3: Turn it up.
2: Brought

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
3: Turn it up.
2: Brought to you by Club Fanasia.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
3: Turn it up.
2: Brought to you by Club Fanasia.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग फन एशिया रेडियो।

फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात। 104

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.

0: 하는
1: 라기로
2: I love you.
3: 안녕 들어 보내야
0: 알아.

0: 9FM फनेशिया फनेशिया फन बना फंडन
1: जहन सीम जहन सीम।

0: Cinco.
1: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
2: That's right. Pump it up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: अजी सुनते हो?
4: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
5: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
8: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: जिंदगी के कई रंग। फनीशा रेडियो के संग।
1: रोते काय को हम।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: playing the music you want all day, every day, only on Funasia Radio.
1: जिन शर्दे हरबीर जे सरकार नहीं कुछ कर सकी तो तू कर लेगा।
2: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं जिंदी करूंगा हॉकी।

0: जा पहला साता लैला
1: मर जानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी वीड वे
2: Bringing the community together. Fun Asia Radio 104.9 FM.

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.
1: आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Lights, Mike, Bollywood, Fun-Asia! Fun-Asia!
1: Praveen, what is this?
2: ये सब क्या है?
1: देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
2: सर। वो
1: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

0: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डालस चॉपटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉपटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: We need to talk.
3: अब क्या हुआ?
2: Nothing. It's not you.
3: Oh no.
2: It's the distance.
3: Distance? We live 10 minutes apart.
2: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
4: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
5: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. And number 926641.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
8: RCR, straight from the heart. कल हिंदी बोल.
9: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, मेरे दोस्तों, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
10: Call नवनीता खेमका at 347-449-4242.
11: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242.
12: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

A very good morning to all the listeners of Sunday Gup Shup. How are you guys? Sab theek thaak? Namaste, salam, sat sri akal, hello. Kaise hain aap sab? Ji haan, main RJ Ekrup aap sabka swagat karti hoon. Sunday Gup Shup hai show ka naam aur 7 baje se leke 10 baje tak ye show aata hai. Khair yahan par ab main shuru karne lagi hoon because long weekend aur kuch bas social events and then jo hai show aaj main ab shuru karne lagi hoon. सो आप सबका स्वागत करती हूँ. 972-235-5555 है स्टूडियो का फ़ोन नंबर. आप कॉल कर सकते हैं. मुझे बता दीजिए कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे. ये शो जिसका नाम संडे गपशप और आता है 7 बजे से लेके 10 बजे तक. 3 घंटे का ये सफ़र होता है मेरा और आपका इकट्ठे. हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनते हैं. टुडे इज़ द फर्स्ट संडे ऑफ दिस मंथ विच इज़ द 6th डे ऑफ द 9th मंथ. और जो है अब हम ऑफिशियली 9th मंथ में आ चुके हैं. सितंबर का महीना जो है आज 6 दिन छठा दिन जो है शुरू हो रहा है. आपका बस जो है साथ चाहती हूँ. यहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 972-235-5555 एंड लेट मी नो व्हाट सॉन्ग्स यू वुड लाइक टू लिसन टू. और बस 10 बजे तक मैं हूँ यहाँ पर एंड ये शो को अभी हम आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ. वंस अगेन दिस इज़ आरजे एकरूप.

स्वागत करती हूँ एक बार आप सबका फिर से. दिस इज़ संडे गपशप ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो और मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे एकरूप. थैंक यू फॉर योर फ़ोन कॉल्स. प्लीज़ कीप द कॉल्स कमिंग इन. 972-235-5555 इज़ अ नंबर टू द स्टूडियो. और ये हमारी लिसनर जिन्होंने ये वाला सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की. सो हियर यू गो.

ये जो मेरा शो है ये आपके लिए लेकर आते हैं उमर ख्वाजा। उमर ख्वाजा इज़ द स्पॉन्सर ऑफ दिस शो। इनका जो है, आप लॉ ऑफिसर्स हैं और आप कोई पर्सनल इंसिडेंट एक्सीडेंट इंजरी हुई है तो फिर आप उमर ख्वाजा के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 469-300-5046, या फिर आप उनकी वेबसाइट विज़िट करें attorneyomar.com। एंड जब आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो कोई फीस नहीं है, और अगर आप उनको उनकी सर्विसेज को हायर भी करते हैं तो जब तक आप जीतेंगे नहीं तब तक वो आपको कुछ आपको पे करने की उनको ज़रूरत नहीं है। यू डोंट गेट टू पे हिम अनलेस ही विन्स द केस फॉर यू। सो डेफिनेटली गेट इन टच विद ओमर ख्वाजा। इनका फ़ोन नंबर 469-300-5046, या फिर इनकी वेबसाइट है attorneyomar.com। हमारी लिसनर जिन्होंने ये वाला सॉन्ग इसकी रिक्वेस्ट की, महेंद्र कपूर जी की आवाज़।

ये सिंगर इतने जाने माने, वेल एस्टैब्लिश्ड, और इनके जो है आवाज़ हर एक्टर को बहुत सूट होती थी, स्पेशली धर्मेंद्र जी के साथ तो बहुत ही इनकी आवाज़ मैच होती थी। महेंद्र कपूर इनका नाम, और काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेबैक सिंगर रहे ये इंडस्ट्री में। गुमराह और हमराज, जो वो हमराज फिल्म का गाना था नीले गगन के तले, वो वाला इनका बहुत पॉपुलर, एंड मनोज कुमार की मूवीज़ उपकार, मेरे देश की धरती, सो ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए हुए हैं। ये पंजाब अमृतसर को बिलोंग कर, वहाँ पर इनकी ये पैदा हुए और बड़े भी हुए, एंड देन ये जो है मोहम्मद रफ़ी साहब की इंस्पिरेशन लेते हुए बॉम्बे पहुँचे, एंड उनकी मेंटरशिप, उनकी रहनुमाई में फिर इन्होंने जो है अपने लिए नाम कमाया। टैलेंट तो डेफिनेटली खुद होता ही है, जब हेल्प या किसी की असिस्टेंस लो तो दैट कैन ओनली हेल्प यू सो मच, बाकी तो फिर 60-70% आपका अपनी जो है टैलेंट होता है, कुछ लक होता है, एंड सस्टेनिंग के लिए भी फिर बहुत मेहनत और डेफिनेटली गुड लक भी चाहिए। सो ही वॉज अ वेल नोन वॉइस, काफ़ी वाइब्रेंट इनकी आवाज़। ये महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम सॉन्ग सुन रहे थे, फिल्म का नाम बहारें फिर भी आएंगी, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया। ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म फ्रॉम द 60s, और ओपी नैयर जी का म्यूज़िक, बहुत अच्छा सॉन्ग, बहुत अच्छी कंपोजिशन, बहारें फिर भी आएंगी, दैट केम आउट इन 1966। अगला सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है वो है ये वाला।

0: हुआ भला।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो मोना, सुनो तो
0: दादा।

0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
2: कल आज और कल जहाँ पर जिस फिल्म में बबीता जी एंड रणधीर कपूर एंड दैट इज़ वेयर देयर लव ब्लॉसम्ड और फिर आगे चलकर इन्होंने शादी की एंड देन अब जब देखो तो जो है करिश्मा कपूर बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखती हैं एंड करीना इनकी जो दूसरी बेटी है वो बिल्कुल कपूर खानदान पर गई है सो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ और काफ़ी रिजेम्बलेंस अब नज़र आती है शायद पहले कभी इतना सोचा नहीं लेकिन वाइल दिस सॉन्ग वॉज प्लेइंग तो मैं सोच रही थी कि करिश्मा जो है बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखती हैं सो ग्रेट एक्टर्स ऑफ कोर्स अ वेरी वेल नोन फैमिली कपूर खानदान और ये सॉन्ग हमारी एक लिसनर जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी अगला सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट आई है छोटा सा सॉन्ग है वो है फिल्म का नाम है आ और नरगिस जी एंड राज कपूर साहब

0: टाइम हो रहा है छोटी सी ब्रेक का. वी आर एंटरिंग इन टू द कमर्शियल ब्रेक इन अबाउट 10 सेकेंड्स. आप कहीं पर भी मत जाइएगा, मैं स्टूडियो में हूँ 10 o'clock तक. और मेरा नाम आरजे एक रूप, और नाम तो एक रूप है, प्रोफेशन आरजे एक रूप. आई बी राइट बैक.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
10: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
15: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: Sadia! कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
18: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
19: तुमसे मिलके दिल का है.
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
18: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

ये सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग है जो हमारे लिसनर दो सॉन्ग्स रिक्वेस्ट करते हैं बैक टू बैक। ब्रेक के बाद आते ही मैंने ये वाला सॉन्ग लगा दिया। स्वागत करूंगी आप सबका। 8:10 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में। दिस इज़ आरजे एकरूप और शो सुन रहे हैं आप संडे गपशप, जिसमें बहुत सारी बातें एक्चुअली हो जाती हैं आप सबके साथ ऑफ एयर, बिकॉज आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं। एंड द एसोसिएशन बिटवीन यू एंड आई एंड द शो इज़ सो ओल्ड कि इतनी सारी बातें होती हैं। इतने आप अपने जो हैं कभी अच्छी अच्छी बातें, कभी हंसने वाली बातें, कभी फैमिली रिलेटेड कुछ सीरियस बातें, कुछ जस्ट जनरल जो टॉपिक्स होते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछना। और फिर बिकॉज़ इतना पुराना एसोसिएशन है, तो ऑब्वियसली यू नो वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ वाइल, तो ये जो शो है इसको आप अपना मानते हैं। और ऑफ कोर्स द लव एंड द अफेक्शन दैट यू शावर ऑन दिस शो एंड टू मी इज जस्ट फिनोमिनल। सो थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, आपका टाइम जो आप निकालते हैं संडे मॉर्निंग यहाँ पर मेरे इस शो के साथ जुड़ने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ द लिसनर्स दैट हैव बिन कॉलिंग इन। एंड कभी डेफिनेटली जो है न्यू लिसनर्स के साथ भी बात होती है ऑन द फोन, एंड काफ़ी जो है पुराने हमारे इस शो के जो बहुत पुराने पुराने जो लिसनर्स हैं जो जुड़े हुए हैं अबाउट 13 ईयर्स से, उनके साथ तो एवरी संडे बात हो ही जाती है। सो शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए, शुक्रिया आपके साथ के लिए। हमारे लिसनर जिन्होंने फर्स्ट ऑफ द टू सॉन्ग्स आई प्लेड एंड नाउ द सेकेंड ऑफ द टू सॉन्ग्स दैट ही ऑलवेज रिक्वेस्ट एंड ही वॉन्ट्स मी टू प्ले दम बैक टू बैक। सो ये वाला जो आप सॉन्ग सुन रहे थे, महबूबा तेरी तस्वीर, ये फिल्म का नाम इश्क पर जोर नहीं, धर्मेंद्र जी एंड साधना जी पर फिल्माया गया, मोहम्मद रफ़ी साहब की ग्रेट आवाज़ में। ये वाला सॉन्ग आई थिंक बप्पी लहरी जी ने ही गाया, नहीं किशोर कुमार साहब ने गाया है, बप्पी लहरी जी का म्यूज़िक है। सो हियर यू गो हमारे लिसनर, आप ट्यून्ड इन हैं, सो ये आपकी चॉइस का दूसरा गाना।

बबी लहरी एंड किशोर कुमार का प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो अमेजिंग था ही, इनका जो है पर्सनल रिलेशनशिप भी था। किशोर कुमार जो है बबी लहरी के मामा लगते थे, बबी लहरी की मदर के भाई, और जो है ये बहुत अच्छा इन दोनों ने काम किया था। देर वॉज़ अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन, म्यूजिकल केमिस्ट्री वी कैन से, और इन्होंने काफ़ी अच्छे जो है सॉन्ग्स बनाए थे और किशोर दा ने गाए थे। सो ग्रेट कलेबोरेशन, ये वाला सॉन्ग बपी लहरी की कॉम्पोजिशन एंड किशोर कुमार की आवाज़। सो हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, विदाउट एनी फर्दर डिले जो अगला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है वो है ये वाला अमिताभ बच्चन जी की आवाज़। इनफैक्ट इनके दो सॉन्ग्स हैं जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, सो आई एम गोना प्ले दिस वन। ये फिल्म का नाम है संजोग, दिस केम आउट इन 1971, और गीत के बोल हैं रूप ये तेरा जिसने। सो जी हाँ, ये वाला सॉन्ग माला सिन्हा एंड अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया।

71-72 के अराउंड की ये फिल्म जिसका नाम संजोग, और इसमें अमिताभ बच्चन के साथ काफ़ी अक्सर नज़र आती थी अरुणा ईरानी जी, एंड शी इज़ ऑल्सो इन दिस फिल्म। इनफैक्ट उनकी लीडिंग लेडी का जो है उनको रोल कैरेक्टर मिला करता था। कुछ फिल्में जो शुरू शुरू की अगर आप देखें तो अमिताभ बच्चन की, उनमें अरुणा ईरानी उनके साथ हैं। इस वाली फिल्म में भी वो इनके साथ हैं। माला सिन्हा भी थी आई थिंक, जिन्होंने ये सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, वो मुझे बता रही थी कि इस मूवी में अरुणा ईरानी उनकी इनकी वाइफ का रोल प्ले करती हैं, मतलब अमिताभ बच्चन की वाइफ का रोल प्ले करती हैं, नॉट हमारे कॉलर की। सो ये फिल्म का नाम संजोग, एंड इसमें म्यूजिक जो है आरडी बर्मन का रहा। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। आप कॉल्स करते रहें, अच्छा लगता है, मुझे भी पता चल जाता है कि आप ट्यून्ड इन हैं, लॉग्ड इन हैं। और एजी फिनटेक्स जो हैं इस शो को स्पॉन्सर करते हैं। एजी फिनटेक्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस। बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू फाइनेंशियल आर अवेलेबल, और एजी फिनटेक्स जो हैं आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए जो आगे फाइनेंशियल पोटेंशियल है उसको स्ट्रेटजाइज करते हैं, फिगर आउट करते हैं, एंड दे वर्क विथ यू। ट्रस्टेड कंपनी है, एफिशिएंट है अपने टाइम के साथ, अपने मनी के साथ, और जो है आपको भी

स्ट्रेटजाइज करते हैं, फिगर आउट करते हैं एंड दे वर्क विद यू. ट्रस्टेड कंपनी है, एफिशिएंट है अपने टाइम के साथ, अपने मनी के साथ, और जो है आपको भी अच्छी तरह फ्यूचर में आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उनके साथ आपको बिल्कुल जो है तैयार कर देते हैं. दे गेट यू इक्विप्ड टू टेक ऑन द फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल फ्यूचर. उनके साथ कॉन्टैक्ट बना लीजिए 4699429888, और उनकी जो वेबसाइट है agfintechs.com इज द वेबसाइट. AG Fintechs are the people, is one of the companies that is the sponsor of this show called Sunday Gupshup. हमारे लिसनर जो साइमल्टेनियसली ये कह सकते हैं मल्टीटास्क कर रहे हैं, अपनी ग्रैंड डॉटर को भी बेबी सिट कर रहे हैं, और उन्होंने ये शो के साथ भी ट्यून्ड इन है, हेडफोन्स लगाए होते हैं ताकि वो अपनी बेटी ग्रैंड डॉटर को भी अटेंड करें एंड देन साथ में हमारा ये शो भी सुने. सो थैंक यू भरत भाई, ये वाला सॉन्ग आपकी रिक्वेस्ट में.

0: गोल्ड डायमंड ज्वेलरी खरीदनी है या घर में शादी है तो आप ब्राइडल कलेक्शन देख रहे हैं, तो PMJ ज्वेल्स लोकेटेड इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट, आप जाएं वहाँ पर. देर आर गोइंग टू बी सम एक्सक्विजिट एक्सलेंट ज्वेलरी पीसेज डेफिनेटली PMJ ज्वेल्स दैट आर नाउ इन डैलस, वेरी क्लोज टू यू इन फ्रिस्को. दे हैव 60 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो इनकी जो है फैमिली में चलता आ रहा है. दे हैव बिन डूइंग द ज्वेलरी बिजनेस फॉर एटलीस्ट 60 ईयर्स नाउ. PMJ ज्वेल्स लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. ब्रेक के बाद मैं बस अभी गई और अभी वापस आती हूँ.
1: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
2: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
3: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
3: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
4: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
2: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
7: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं.
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं.
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं.
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
13: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

ये कल्याण जी आनंद जी की का म्यूजिक 1969 में आई थी मूवी बंधन. हमारे लिसनर जो ट्यून्ड इन है और वो वाला सॉन्ग, अब मेरी नज़र एकदम से पड़ी है स्टूडियो की क्लॉक की तरफ एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 8:29. तो अब मैं जो है दूसरा गाना तो नहीं प्ले करूंगी, लेकिन आपको क्विकली हमारे जो एडवर्टाइजर्स हैं उनमें से एक जो है उनके बारे में बता दूं. PMJ ज्वेल्स दैट आर नाउ इन फ्रिस्को, दे हैव ब्रॉट टू यूज़ देयर 60 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. आप को अगर कोई

वेलकम बैक. यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम वनेजा रेडियो. मैं आरजे एक रूप आपका स्वागत करती हूँ. शो का जो है टेक्निकली 1.5 घंटा हो चुका है. 7 से 10 ये शो आता है तो मिडवे हम पहुँच गए हैं. 8:35 हो रहे हैं स्टूडियो के क्लॉक में और आपकी फरमाइशें आ रही हैं, आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच. बस फटाफट ही ये जो है 3 घंटे निकल जाते हैं एंड टाइम एक्चुअली जस्ट ओवरऑल इज़ फ्लाइंग. आई कैन नॉट बिलीव दैट वी आर ऑलरेडी इन द 9th month. आज जो है 6th day है सेप्टेम्बर का. सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, बस अभी जो है 4-5 महीने, 4 महीने बचे हुए हैं इस साल को कंप्लीट होने में एंड 2027 भी बस जल्दी जल्दी आ जाएगा. सो जहाँ पर महीने इतनी जल्दी भाग रहे हैं, ये जो 3 घंटे हैं ये तो फटाफट से ही निकल जाते हैं. अच्छे सॉन्ग्स हों, अच्छी बातें हों, अच्छा साथ हो और खूबसूरत मौसम हो तो और क्या चाहिए. फिर तो ड्राइव अच्छे अपने आप अच्छी हो जाती है और अगर आप घर में हैं तो फिर अगर अच्छे सॉन्ग्स का साथ हो तो फिर जो भी आप काम कर रहे हैं घर में या आराम से रिलैक्स कर रहे हैं या बेबी सिटिंग कर रहे हैं लाइक वन ऑफ आवर अदर कॉलर्स, तो टाइम अच्छा निकल जाता है. सो वैसे मैं ना ये वाला सॉन्ग या इस टाइप का सॉन्ग इतनी जल्दी नहीं लगाती, लेकिन हमारे लिसनर कह रहे हैं कि वो कार में हैं और वो जल्दी से बस पहुंच जाएंगे अभी. सो आई एम गोइंग टू मेक दिस लिटिल एक्सेप्शन फॉर राइट नाउ, फॉर टुडे मे बी. बट ये बहुत पार्टी टाइप सॉन्ग है, रीसेंट सॉन्ग है, तो यूजुअली मैं ऐसे सॉन्ग इतना अर्ली 8:30 के अराउंड नहीं लगाती. हाँ, 9:30-10 के अराउंड लगा सकती हूँ, लेकिन हमारे लिसनर ड्राइव कर रहे हैं और जल्दी से ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे, तो छोटा सा मैं उसका बस टुकड़ा हल्का सा इस सॉन्ग का पीस लगाऊंगी ताकि आप भी खुश, हमारे बाकी और जो लिसनर्स हैं जो ये सॉन्ग पसंद करते हैं वो भी खुश. तो चलिए, हियर यू गो.

सलमान खान पर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इनके साथ बहुत ही क्यूट सी एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस, मीका सिंह की आवाज़ एंड हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक, फिल्म का नाम किक। सलमान खान जब से इंडस्ट्री में आए हैं, वो ही वॉज बॉर्न इन द इंडस्ट्री, सलीम साहब के बेटे हैं तो इंडस्ट्री में ही पैदा हुए हैं, बॉलीवुड हिंदी फिल्मों से घिरे हुए हैं जब से बॉर्न हुए हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल एडल्ट फुल टाइम एक्टर तो तब से इन्होंने कितने सारे जॉनरा ऑफ फिल्म्स हैं जिसमें काम किया है इन्होंने। शुरू में तो जब इन्होंने शुरू किया था ऑब्वियसली कोई जानता नहीं था बड़े पर्दे पर, 1988 में जब इन्होंने काम किया था बीवी हो तो ऐसी। उसके बाद एक्चुअली जो इनको रियल स्टारडम मिला वो 1989 में मैंने प्यार किया के साथ, और फिर तो स्काई रॉकेट हो गई इनकी इनकी पॉपुलैरिटी, इनका स्टारडम, एंड सिंस देन एक्चुअली देर हैज़ बिन नो स्टॉपिंग एंड नो लुकिंग बैक। सो ये छोटा सा वर्ल्ड सॉन्ग तो काफ़ी लंबा है, मैंने ये थोड़ा सा इसका ग्लिम्प्स आपको दिया बिकॉज हमारे लिसनर जो हैं अभी जल्दी से पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर, तो थोड़ा सा उनको जो है उनका सॉन्ग मैंने प्ले कर दिया यहाँ पर उनकी रिक्वेस्ट का। चलिए नाउ गेटिंग बैक टू द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट आई यूजली प्ले, बिकॉज जो है आपकी रिक्वेस्ट आती हैं सुबह इस टाइम पर, तो जो आपकी चॉइस है वो इन्हीं सॉन्ग्स की होती है, तो मैं फिर ये ऐसे जो है पुराने रेट्रो न्यू सब कुछ जो है अच्छे मेलोडियस सॉन्ग्स का मिक्स प्ले करती हूँ यहाँ पर। हमारे एक और लिसनर हैं जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उनके फ्रेंड आने वाले हैं तो ही इज़ गोइंग टू रिसीव हिम, तो ये वाला सॉन्ग जिसकी उन्होंने रिक्वेस्ट की, फिल्म का नाम साथी, और गा रही हैं सिमी गरेवाल।

इस मूवी के करीबन सारे ही सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। फिल्म का नाम साथी और इसका एक जो टाइटल ट्रैक मेरे जीवन साथी बहुत अच्छा सॉन्ग था। ये कौन आया, बहुत अच्छा प्यारा सॉन्ग एंड आंखें खुली थी एट्सेट्रा। सो अच्छा म्यूजिक था इस फिल्म का। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस के लिरिक्स लिखे थे एंड ये फिल्म जिसमें सिमी गरेवाल थी, राजेंद्र कुमार थे और इनके साथ वैजंती माला भी थी। सो ये स्टार स्टडेड फिल्म अपने टाइम की 1968 में आई थी। फिल्म का नाम साथी। फॉर सम रीज़न कुछ पीछे अभी दो तीन सॉन्ग्स आए हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई है और मैंने प्ले भी किया है, वो अमिताभ बच्चन की फिल्मों के सॉन्ग्स हैं। एक ये वाला सॉन्ग है, ये भी उन्हीं की फिल्म का सॉन्ग है, परवीन बॉबी के साथ है। फिल्म का नाम कालिया।

आशा जी एंड किशोर कुमार की आवाज़ तुम साथ हो जब अपने, ये इतना अच्छा सॉन्ग मजरू सुल्तानपुरी अगेन एज द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इन दिस फिल्म. अगेन राहुल देव बर्मन, आर डी बर्मन का म्यूज़िक. और जब तक ये फिल्म आई थी 1981 में, तब तक अमिताभ बच्चन का जो है क्रेज़ इतना बढ़ गया था. ही हैड एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ वेल नोन एक्टर, और इन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी फिल्में फिर इससे पहले कर चुके थे. इसके बाद भी ऑफ कोर्स अभी तक भी इनका इतना करियर फ्लरिश कर रहा है. तो ये लॉन्ग लास्टिंग इनका करियर बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर. एंड इस फिल्म में परवीन बॉबी, इनके साथ टीनू आनंद जो कि कई फिल्मों में विलन के रोल में भी बाद में हमने 90s में देखा उनको, बट ही इज़ द वन दैट इज़ द डायरेक्टर. और उन्होंने अपना आई थिंक जो करियर शुरू किया था वो एज अ डायरेक्टर ही शुरू किया था, और उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में बनाई थी. एंड दिस वॉज वन ऑफ देम दैट केम आउट इन 1981. फिल्म का नाम कालिया. एंड यू थिंक ऑफ एन एक्टर, और वो एक्टर इस फिल्म में है प्राण साहब. अमजद खान, जिनके साथ अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे फ्रेंडली टर्म्स थे. कादर खान वॉज इन द फिल्म. आशा पारिक भी थी इस फिल्म में, जो कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर कालिया की भाभी बनती हैं. और परवीन बॉबी तो ऑफ कोर्स शी वॉज द लीडिंग लेडी. सो बहुत अच्छी बढ़िया स्टार कास्ट भी थी. मुराद भी थे इस फिल्म में, सुधीर, पूर्णिमा, के एन सिंह जो कि इतने पॉपुलर एक्टर रहे हैं. सो ये सभी जाने माने एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा बने. फिल्म का नाम कालिया जो आई थी 1981 में. आर डी बर्मन का जबरदस्त म्यूजिक. अगला जो सॉन्ग है वो एक बड़े ही क्लासिक एक्टर रहे हैं इंडस्ट्री में, एंड आई थिंक उनके जैसा स्टाइल किसी का भी नहीं रहा. ही वॉज नोन टू बी सो डैशिंग, और चाहे वो ऑन स्क्रीन नज़र आते थे, चाहे वो ऑफ स्क्रीन जब अपनी मूवीज़ की पार्टीज़ में जाते या अवार्ड फंक्शंस में जाते थे, तो वो इतने डैशिंग और इतनी शार्प पर्सनैलिटी. अपना ही उनका एक अलग तरीका था, यूनिक अंदाज़. उन्हीं की फिल्म गैम्बलर 1971 में जो आई थी, उसका ये सॉन्ग सुनते हैं. मैं बात कर रही थी देवानंद साहब की.

ये वाला सॉन्ग जो फिल्म गैम्बलर 1971 में उसका हम ये सॉन्ग सुन रहे थे। 5 मिनट बचे हैं ब्रेक पर जाने से पहले, तो ऐसा है कि फिर मैं ब्रेक के बाद आके जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके बारे में आपको और भी बताऊंगी। गिव अवे है मेरे पास, एक रेस्टोरेंट का नहीं है फॉर अ चेंज दिस टाइम। ये एक डिफरेंट बिजनेस है। दिस इज़ फ्रॉम अ डक्ट कंपनी। सो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद, जब मैं रिज्यूम करूंगी देन आई विल लेट यू नो। डक्ट जो कंपनी है उसकी तरफ से, डक्ट टाइम इज़ द नेम द कंपनी, उनकी तरफ से ये गिव अवे है। सो आई विल टॉक अबाउट इट एज वेल। ब्रेक पे जाने से पहले ये वाला सॉन्ग है, सायरा बानू जी पर फिल्माया गया। फिल्म का नाम झुक गया आसमां।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
6: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
7: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
8: हेलो वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन हाउ मे आई हेल्प यू
9: हेलो मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है
8: फिकर नॉट वी हैव द Perfect solution.
10: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी.
12: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
10: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगा एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
13: इतना सब और प्राइस
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगा एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
14: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट
15: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव
14: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
15: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन
16: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
17: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

The famous Shakira, Whenever, Wherever. Welcome back. You are tuned in to 104.9 FM Fanisha Radio and मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आपका स्वागत करती हूँ. 9722355555 is the number to the studio. ये number वैसे तो आपको याद है और अभी तो very specially याद कर लीजिए. Emphasize कर रही हूँ because अभी जो है टाइम हो रहा है गिव अवे का. तो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक गिव अवे है. कंपनी का नाम है डक्ट टाइम और अभी जो है उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है. डैलस में इनको एक साल हो गया है. दे हैव बिन प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डक्ट क्लीनिंग सर्विसेज और इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. डक्ट क्लीनिंग दैट हेल्प्स रिमूव डस्ट, इट क्लियर्स क्लॉग्ड वेंट्स एंड इम्प्रूव द एयर फ्लो इन द हाउस एंड दे ऑल्सो रिड्यूस or eliminate hidden fire hazards. So definitely you can get in touch with Duct Time is the name or Jeetu Patel hain business ke owner. Unka phone number hai 9728772500. Aap appointment ke liye unko call kare and find yourself a cleaner, safer and fresher home. Agar hawa saaf hogi to aap achhi hawa jo hai breathe karenge aur acha feel karenge, clean feel karenge. तो आप अपनी डक्ट क्लीनिंग सर्विसेज के लिए डक्ट टाइम जीतू पटेल 9728772500. वंस अगेन 9728772500. आप इनके साथ कांटेक्ट बनाएं, अपनी अपॉइंटमेंट ले लीजिए. डक्ट टाइम दे प्रोवाइड सर्विसेज टू हेल्प रिमूव डस्ट, दे क्लियर क्लॉग्ड वेंट्स एंड देयरफॉर इन टर्न इट गिव्स यू a better airflow in the house and it also eliminates the hidden fire hazards such as a nest maybe that a bird builds in your vent. To ye jo hai aap zarur call karein Jeetu Patel 972-877-2500. सो ये है गिव अवे इनकी तरफ से. आप अगर मुझे इस सवाल का जवाब दे देते हैं सही, ठीक, बिल्कुल राइट, तो आपको एक जो है सर्विस मिलेगी ड्राई वेंट क्लीनिंग के लिए. डक टाइम जीतू पटेल आपको एक सर्विस देंगे ड्राई वेंट क्लीनिंग के लिए. फोन कॉल्स आ रहे हैं. मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन मैं अभी आपको पूछने वाली हूँ. सो दिस इज द क्वेश्चन, गिव मी द राइट आंसर एंड देन यू मे विन अ सर्विस फॉर ड्राई वेंट क्लीनिंग फ्रॉम डक टाइम. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अभी मैं एक सॉन्ग का एक पोर्शन प्ले करूँगी, उसमें आपको एक्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना है. वैसे तो इस फिल्म में, इस सॉन्ग में बहुत सारी सारी एक्ट्रेसेस हैं जो लीडिंग लेडीज हैं, लेकिन सॉन्ग के इस वाले पोर्शन में एक एक्ट्रेस है जिनके ऊपर फोकस है एंड जो है आप मुझे उनका नाम बताइए एज वेल एज उनकी जो फर्स्ट फिल्म थी उसका नाम मुझे बता दीजिए. सो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द एक्ट्रेस दैट इज सिंगिंग दिस सर्टन पोर्शन ऑफ द सॉन्ग, द फीमेल एक्टर. आप उनका नाम बताइए एंड देन व्हेन यू कॉल टू गिव मी हर नेम यू ऑल्सो हैव टू टेल मी हर फर्स्ट फिल्म दैट शी एवर फीचर्ड इन. तो चलिए ये वाला पोर्शन है सॉन्ग का, सुनिए एंड टेल मी द एक्ट्रेसेस नेम जो ये सॉन्ग गा रही हैं.

0: इमोशनल.
1: तो आपको मुझे नाम बताना है ये जीजी कौन है. एज इन सिस्टर का रोल प्ले किया था इन्होंने. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्ट्रेस दैट प्लेड द रोल ऑफ अ सिस्टर ऑफ देयर सिस्टर इन दिस फिल्म. सॉन्ग है ABCD, वो भी मैं अभी आगे उसको कंटिन्यू करूँगी तो आप पहचान जाएंगे. बट दिस सर्टन लाइन दीज सर्टन लाइन्स आर sung by a playback singer. I think unka Hema Sardesai hai naam. But Hema Sardesai kin ke liye ga rahi hai? The actress that is singing the song in this certain time, at this certain time of the song. So I'm going to play this again, figure it out and let me know. 972-235-5555. You've got to tell me the name of this actress and also her first film.

0: गुड मॉर्निंग, यू आर ऑन एयर, यू आर लाइव ऑन एयर. आपने एक गिव अवे के लिए कॉल किया है या सॉन्ग रिक्वेस्ट के लिए? हाँ जी,
1: यस,
0: नेवन जी,
1: आई हैव एन
0: और
1: आंसर फॉर यू.
0: यू हैव द
1: आई
0: आंसर
1: हैव एन
0: फॉर
1: आंसर
0: मी,
1: फॉर यू.
0: सो यस, गो अहेड एंड टेल मी द आंसर.
1: द फर्स्ट मूवी, एक्ट्रेस इज नीलम कोठारी.
0: हाँ जी.
1: मूवी, फर्स्ट मूवी वुड बी जवानी.
0: यस, यू नो द आंसर. आप अपना एक्चुअली रेडियो का वॉल्यूम इन द बैकग्राउंड कम कर देंगे? बिकॉज ओके, ऑलराइट, सो यू डिड गिव मी द राइट आंसर. आप पहली कॉलर हैं एंड आई एम श्योर द अदर पीपल दैट आर कॉलिंग ऑल्सो हैव द राइट आंसर. सो नेवन जी, कैन यू कॉल मी बैक शॉर्टली? लेट मी टेक अदर कॉलर्स एज वेल सिंस दे आर कॉलिंग, बट आई आई वेट फॉर योर कॉल. ओके, गुड मॉर्निंग, योर लाइफ ऑन एयर.
2: Hey, hi. So
0: Hi.
2: the answer is Neelam.
0: Yes, that's right. And unki first film?
2: Yeah, that
0: okay,
2: I don't know.
0: चलिए, थैंक यू. गुड मॉर्निंग, योर लाइव ऑन एयर. आपने गिव अवे के लिए कॉल
3: किया? ये हम साथ साथ फिल्म का नाम है और गाड़ी नीलम.
0: हाँ जी,
3: एक्टर नीलम है.
0: हाँ जी, दैट्स राइट. और उनकी फर्स्ट मूवी?
3: फर्स्ट मूवी तो ये याद नहीं.
0: ओके, चलिए, कोई बात नहीं. आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन एयर. जी, शुक्रिया. गुड मॉर्निंग, योर लाइव ऑन एयर.
4: Yeah, so the answer is Neelam and first movie is Jawani.
0: Jawani, yes. और आप अपना नाम बता दीजिए. वैसे तो हमें विनर मिल चुके हैं ऑलरेडी, बट आई एम जस्ट टेकिंग कॉल्स. आंटी, तो आप अपना नाम.
4: माई नेम इज श्वेता.
0: श्वेता, थैंक यू श्वेता, कंग्रेचुलेशन, बट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आवर विनर. थैंक यू. गुड मॉर्निंग, योर लाइव ऑन एयर.
5: Good morning. I think actress is Neelam.
0: Yes.
5: And the first movie, I think, is Jawani.
0: Jawani. आप थोड़ी unsure लग रही हैं. Yes, that is the right answer. Jawani, उनकी first film थी, and 1984 में. और उनकी आपने और कोई film देखी है? Other than हम साथ.
5: हम साथ साथ है is one of the movies I've seen. Govinda के साथ बहुत सारा. I mean, the famous song. वो जो डांस करते हैं इन कश्मीर, राइट?
0: मैं वो लाइन अप किया हुआ है, वो मैं प्ले करूंगी.
5: वंडरफुल सॉन्ग.
0: थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. आई अप्रिशिएट एवरीबॉडी दैट्स कॉलिंग इन, दैट्स कॉल्ड इन. जवानी थी इनकी फर्स्ट फिल्म नीलम की, और बहुत ही अच्छी, क्यूट, गुड लुकिंग एक्ट्रेस, बहुत ही इनोसेंट. और इनका जब इन्होंने जवानी फिल्म, इतनी कोई खास तो नहीं चली थी, नोबडी एवर हर्ड अबाउट द फिल्म, लेकिन जो है बॉम्बे में जो जिनको जानना चाहिए था इस एक्ट्रेस के बारे में, उन सबको खबर पता चल गई, खबर मिल गई कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस लॉन्च हुई हैं. एंड उसके बाद, उस फिल्म के बाद तो इनको इतने सारे फिल्म ऑफर्स आए, एंड गोविंदा के साथ, सिर्फ गोविंदा के साथ इन्होंने अबाउट 13 या 14 फिल्मों में काम किया. चंकी पांडे वॉज अ फ्रिक्वेंट फेस इज वेल अलॉन्ग विद हर. सो नीलम इस गाने में, इस फिल्म में, ये एक बार मैं फिर से प्ले करती हूँ. बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग है, थोड़ा सा ही प्ले करूँगी एंड देन उसके बाद फिर मैं वो प्ले करूँगी आपके आ जाने से, जो कि गोविंदा के साथ है. नेवन जी, आप प्लीज़ कॉल कर लीजिए अभी राइट अवे, एंड देन आई कैन tell you the details of how you can claim your giveaway. Anyway, this song shuru se to nahi, but itna hi piece main repeat kar deti hu, and yes, Neelam is the right answer, and then I'm going to play the other song.

फटाफट ही सॉन्ग एब्रप्टली खत्म हो गया, बट चलिए, दिस इज द वन वेयर गोविंदा एंड नीलम्स केमिस्ट्री वॉज सो मच लव्ड. फिल्म का नाम आई थिंक खुदगर्ज है, तो चलिए ये भी सुन लेते हैं.

मोहम्मद अजीज ने अपनी आवाज दी गोविंदा को एंड साधना सरगम जी ने ये गाना गाया नीलम के लिए. नीलम सच अ बडिंग, सच अ क्यूट एक्ट्रेस, टैलेंटेड एक्ट्रेस, और इन्होंने लीडिंग लेडी के तौर पे तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया था. इनफैक्ट जब इन्होंने इंडस्ट्री एंटर की थी 1984 में, उसके बाद से तो शी वॉज इनंडेटेड विद सो मेनी रोल्स ड्यूरिंग द टाइम दैट दोज द टाइम द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट वी वर सीइंग इन दैट टाइम. सो सभी में ही काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरी, लेकिन बहुत पॉपुलर हो गई थी एंड शी हैड साइंड अप साइंड फॉर सो मेनी फिल्म्स. और गोविंदा के साथ ही आई थिंक इनकी 14 फिल्में बहुत हिट पेयरिंग थी इनकी इनके साथ, और चंकी पांडे के साथ भी अक्सर नजर आया करती थी. जस्ट रैंडमली आज मुझे लगा कि मैं नीलम, ये वाली जो इतनी अच्छी एक्ट्रेस रही हैं इंडस्ट्री में, उनका कोई एक ट्रिविया करूं एंड देन आप उसके लिए वो गिव अवे जीत सकें. सो नेवन जी इज़ द विनर फॉर टुडेज गिव अवे एंड आई डू अप्रिशिएट द अदर लिसनर्स दैट कॉल्ड इन. तो नीलम वाज द राइट आंसर एंड उनकी फर्स्ट फिल्म जवानी दैट केम आउट इन 1984. ये वाला सॉन्ग हम सुन रहे थे फिल्म खुदगर्ज का. 80s में एक और बहुत अच्छी फिल्म आई थी, कम्प्लीटली डिफरेंट, नथिंग टू डू विद नीलम और गोविंदा और चंकी पांडे, लेकिन ये वाली जो एक्ट्रेस सुपरस्टार ऑफ इंडिया, फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडिया, उन पर फिल्माया गया, ये वाला सॉन्ग बहुत खूबसूरत है.

स्वागत है आप सबका. थैंक यू सो मच. यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो. शो का नाम संडे गपशप. 7 से 10, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये शो आता है. घड़ी में आप टाइम देखें, इट इज 9:35, यानी कि अबाउट 25 मोर मिनट्स टू गो बिफोर आई कंक्लूड द शो फॉर टुडे. संडे के संडे आपसे मुलाकात होती है और ये मुलाकात बहुत ही सुहानी और बहुत ही खूबसूरत हो जाती है. एंड स्पीकिंग ऑफ विच, ये वाला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, सुनिए, इंजॉय कीजिए एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस सॉन्ग विच इज संग बाय मुकेश जी. होल्ड ऑन, ये वाला थोड़ा ना होगा. ये वाला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है हमारे एक लिसनर टोनी जी की तरफ से.

इतना सुंदर सॉन्ग, इतनी अच्छी मूवी, इतना अच्छा म्यूजिक, इतनी अच्छी आवाज. एवरीथिंग अबाउट दिस सॉन्ग एंड द फिल्म वाज सो पॉपुलर, इज स्टिल सो पॉपुलर. मुकेश साहब की आवाज़ में हम ये सॉन्ग सुन रहे थे. इतना क्लासिक, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, एवरग्रीन सॉन्ग. सदाबहार गानों में से डेफिनेटली लिस्ट में इस सॉन्ग का नाम ज़रूर आता है. दिलीप कुमार साहब मेड दिस फिल्म, आई गेस उन्होंने अमर बना दिया इस फिल्म को. इमॉर्टल बन गई ये फिल्म, ये म्यूज़िक, एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म विच इज़ मधुमती इज सो पॉपुलर. एंड द म्यूज़िक लवर्स, द फिल्म लवर्स लव दिस फिल्म एंड द सॉन्ग्स. मेरे इस शो को होको हॉको जो है स्पॉन्सर करते हैं. दे आर अ वेरी वेल नोन फूड बिजनेस रेस्टोरेंट है इनका यहाँ पर प्रेस्टन फ्रिस्को में. वेल नोन चेन है और ये एक जो है ये सतीश चोना जो कि अहमदाबाद को बिलोंग करते हैं, उन्होंने 1944 में ये कहानी शुरू की थी एंड ये अब तक चलता आ रहा है. इसमें कोई तो बात होगी डेफिनेटली, तभी इतना लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग ये रेस्टोरेंट है जो कि इतना पॉपुलर है. अभी आपके लिए आ चुका है, फ्रिस्को में लोकेटेड है ये, इनकी लोकेशन फ्रिस्को में है. तो आप ज़रूर जाके टेस्ट कीजिए. अगर नहीं खाया यहाँ पर तो आपको ज़रूर जाना चाहिए यहाँ, बिकॉज इट इज़ अ लेगेसी दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस दैट स्टार्टेड इन 1944 इन अहमदाबाद. इनके जो है मेन्यू, काफ़ी वैरायटी है मेन्यू में और इनकी लोकेशंस डिफरेंट स्टेट्स में हैं, जैसे जॉर्जिया में एक है, इलिनॉय में, ओहायो, न्यू जर्सी, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और टेक्सास में है. एंड वी आर लकी दैट इट इज़ राइट क्लोज टू अस इन फ्रिस्को. और इनका मेन्यू लाइक आई सेड बहुत वेरीड है, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं. सो देव गॉट सम ग्रेट नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस, सम वंडरफुल वेजिटेरियन ऑप्शंस और पॉपुलर फूड स्टाइल है इनका. चाट्स भी हैं, इनकी चाट मिलेंगे आपको, साउथ इंडियन फूड मिलेगा, नॉर्थ इंडियन फूड मिलेगा. सो गुड वैरायटी ऑफ फूड डिशेस आइटम्स दैट आर अवेलेबल एट हॉको. इनका फोन नंबर है 972-292-9368. डेफिनेटली विजिट देम स्टोर और यू कैन इवन कॉल देम एट 972-292-9368. Hoko, this is the Indian kitchen which is located in Frisco. और अब जो अगला सॉन्ग है वो प्ले करने से पहले मैं आपको ना इनके बारे में बता दूँ. एक और एडवर्टाइज़र हैं और इनका नाम है आचार्य गौरव गोस्वामी. इन्होंने अभी सितंबर 4 को ही एक बहुत अच्छा सा भजन है, चिर जीवे लाल कन्हैया, विच ही रिलीज्ड ऑन यूट्यूब. और जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने ये वाला भजन गाया. सोलफुल भजन है, आप ज़रूर सुनिए. दिस इज़ ऑन यूट्यूब एंड दिस इज़ sung by Acharya Gaurav Krishna Goswami ji. He presents this soulful bhajan that transports you to the joyous celebration at Nand Bhavan, where the birth of Kanhaiya fills the Braj area with happiness. So, Acharya Gaurav Krishna Goswami ka jo hai Chir Jive Lal Kanhaiya, inhone abhi release kiya hai September 4th ko. Definitely listen to it on YouTube and you are going to enjoy the bhajan. चलिए अब हम बढ़ते हैं ये वाले सॉन्ग की तरफ. फिल्म का नाम है दिल तो पागल है.

यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी ये फिल्म इतनी अच्छी थी, दिल तो पागल है, सब कुछ ही इस फिल्म क्या अच्छा था। और बहुत टिपिकल यश चोपड़ा टाइप स्टाइल ऑफ मूवी, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी इस फिल्म में, अच्छे अच्छे लोग थे इस फिल्म के, और बहुत अच्छा म्यूज़िक था, आवाज़ें बहुत अच्छी थी। ढोलना फिल्म का नाम, दिल तो पागल है। आपके हमारे इस शहर में, एक्चुअली वेरी क्लोज़ टू वेयर आई एम राइट नाउ, मिकिनी में ये स्टूडियो है, और यहाँ से जो बहुत ही पास एक और सिटी है एलन, वहाँ पर आपके बहुत ही पसंदीदा सिंगर आ रहे हैं, सोनू निगम। ही विल बी परफॉर्मिंग लाइव फॉर यू एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर, विच इज़ राइट हियर ऑन स्टेसी। September 26th को आ रहे हैं आपके शहर में, 8:30 बजे इनका कॉन्सर्ट शुरू होगा। कॉन्सर्ट का नाम है रेवोल्यूशन। तो आप सोनू निगम की टिकट्स जो हैं इस इवेंट के, इस कॉन्सर्ट के, आप ज़रूर ले लीजिए। 855-360-SHOWS, SHOWS इज़ द नंबर टू कॉल फॉर टिकट इन्फॉर्मेशन। आप टिकट मास्टर पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी इस शो की, इस कॉन्सर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन, टिकट्स वगैरह सब अवेलेबल होंगी। दिस इज़ गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक विद द वंडरफुल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम। सो जी हाँ, 26 सितंबर को वो यहाँ पर होंगे, 8:30 बजे कॉन्सर्ट शुरू होगा, क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर, विच इज़ ऑन स्टेसी इन एलन। September 26th सैटरडे है उस दिन, 8:30 बजे। आप ज़रूर टिकट्स ले लीजिए, टिकट मास्टर पर अवेलेबल है इसकी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज़ द टिकट्स। और या फिर आप इन्फॉर्मेशन, अगर आप बातचीत करके कुछ ऑब्टेन करना चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, तो 855-360-SHOWS। सोनू निगम के बारे में बात हो रही है, और उनका एक सॉन्ग है जो मैंने यहाँ पर लाइनअप किया हुआ है। 1999 में उनकी एक एल्बम आई थी दीवाना, जिसमें उन्होंने वो, ये जो सॉन्ग मैंने लाइनअप किया है, इसमें उस टाइम के जो मिस्टर इंडिया बने थे वो इस एल्बम में, इस सॉन्ग में नज़र आ रहे हैं। एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये वाला सॉन्ग रहा, टॉप, इट वाज टॉपिंग ऑल द चार्ट्स, द लिस्ट, और जो है ये सॉन्ग बहुत अच्छा था। साजिद वाजिद की कॉम्पोजिशन थी, और सोनू निगम ने तो बहुत ही अच्छा गाना ये गाया था एज़ ऑलवेज़। इसमें जो दो मॉडल्स हैं, लाइक आई सेड, एक तो दिवाकर पंडीर हैं जो उस टाइम के मिस्टर इंडिया थे, एंड ये जो फीमेल मॉडल हैं, इनका नाम मेघना रेड्डी। इनकी सिस्टर समीरा रेड्डी इज़ एन एक्ट्रेस, और ये मेघना रेड्डी, ये भी ग्लैमर की दुनिया में इनका प्रोफेशन रहा है, एंड शी इज़ फीचर्ड इन दिस सॉन्ग। सोनू निगम कमिंग टू टाउन इन एलन ऑन September 26th। डू गेट योर टिकट्स सून।

बिफोर द सॉन्ग स्टार्ट्स आई डू वॉन्ट टू से दिस इज सुषमा रेड्डी. ये दोनों तीनों सिस्टर्स हैं, आई थिंक इनमें दो या तीन सिस्टर्स हैं डेफिनेटली. सो सुषमा रेड्डी इज द मॉडल इन दिस एल्बम इन दिस सॉन्ग विद दिवाकर पुंडीर. वेल एनी वे वी आर लिसनिंग टू अ सॉन्ग दैट इज संग बाय सोनू निगम बिकॉज ही इज गोइंग टू बी इन टाउन दिस मंथ.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: एक और लड्डू ले लो।
3: थोड़ी और बिरयानी।
2: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
4: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
5: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
15: RCR, straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
16: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
17: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
18: Phone uthaye, number dabaye, 347-449-4242.
19: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
20: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे जस्ट एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। संडे जस्ट चिल में होता है हमारा फन फैक्ट सेगमेंट। करती हूँ कुछ आपके साथ मजेदार, इंटरेस्टिंग, फन बातें शेयर। और अगर हैं ऐसी कुछ बातें आपके पास तो जरूर करिए हमारे साथ शेयर। स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555। अ बिग शाउट आउट, अ बिग थैंक यू टू एक रूप फॉर अ फैब फैब शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM with full of melodies, you know, nostalgia and fun numbers. So thank you so much, Ekrup. A big shout out going for you. Coming back to Just Chill. So yes, सुनेंगे कुछ मेरी और कुछ आपकी पसंद के गाने एंड साथ ही करेंगे कुछ मज़ेदार, फन और इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर।

वादे तोड़ना तो कभी भी अच्छी बात नहीं होती है, और इन जनाब ने तो 100 वादे तोड़ दिए. ये तो बड़ी गलत बात है, राइट? अच्छा, वादे अगर कोई पूरा करता है तो दैट इज ड्रीम होम मॉर्गेज. और अगर आपने वादा किया है कि भाई मैं एक बंगला बनाऊंगा न्यारा, सो वेल, आपका जो ये ड्रीम होम है मे बी क्लोजर देन यू थिंक. जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज जो है हैज हेल्प्ड मेनी फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग. तो आपको अगर अपना ये नया घर खरीदना है या दूसरा या तीसरा घर खरीदना है, रीफाइनेंस करवाना है, तो आप ड्रीम होम मॉर्गेज को कॉल कर सकते हैं. तो उनका नंबर है 972-245-5626, और यू कैन विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज .com. एज अ ड्रीम होम मॉर्गेज इज मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. तो याद रखिएगा एंड गो अहेड एंड बिल्ड योर ड्रीम होम.

मेघा, सचमुच रिमझिम रिमझिम ही बरसे थे जब हमारे कृष्ण भगवान ने लिया था जन्म, राइट? तो मैं आपको बताऊं दैट ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी यू कैन एक्सपीरियंस द डिवाइन स्पिरिट ऑफ ब्रिज विद द मेलोडियस वॉइस ऑफ आचार्य गौरव कृष्णा गोस्वामी जी प्रेजेंटिंग चीर जीवे लाल कन्हैया. इट्स अ वेरी सोलफुल भजन दैट ट्रांसपोर्ट्स यू टू द जॉयस सेलिब्रेशन एट नंद भवन. जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जो सेलिब्रेशंस हुई, ये भजन उसी को कवर करता है. वे द बर्थ ऑफ कन्हैया फिल्स ऑल ऑफ ब्रिज विद हैप्पीनेस प्रेजेंटेड बाय डिवाइन रिकॉर्ड्स एंड व्रजस प्रोडक्शंस. द ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज ऑन September 4th. So let's become a part of this divine celebration and let's go ahead and listen to this beautiful bhajan. And that is Chir Jeeve Lal Kanhaiya.

0: or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
7: ये तारा वो तारा हर तारा.
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
11: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
12: तुमसे मिलके दिल का है.
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
11: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
13: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

आप 104.9 FM Fun Asia Radio bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम as the name suggests, Just Chill. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 972-235-55-55.

Well, that was the title track of साथिया and साथियों, मैं आपको बताऊं कि अगर कई बार होता है कि आपको कहीं डॉक्टर के जाना है एंड यू हैव नो इंश्योरेंस या फिर पैशन हेल्थ जो है आउट ऑफ नेटवर्क है, तो आप चिंता ना करें, वरी नॉट, बिकॉज यू कैन गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. यू नो, इट विल इंक्लूड प्राइमरी केयर, इट विल इंक्लूड प्रिवेंटिव केयर एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मच मोर. सो आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को कॉल करें, द नंबर इज 214-666-6259 और विजिट passionhealthphysicians.com. एंड यू नो, दिस प्रोग्राम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई, सो डेफिनेटली यू नो यू कैन कॉल एंड आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और विजिट passionhealthphysicians.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन.

टेकन फ्रॉम द मूवी आजा नचले, दैट इज ओ रे पिया। अच्छा, कुछ फन फैक्ट्स करती हूँ आपके साथ शेयर। तो आपको पता है ना कि कई बार एक कोई गाना होता है विच कैन इंस्टेंटली ट्रांसपोर्ट यू बैक टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ योर लाइफ। होता है ना कि वो गाने से आपकी कोई एक मेमोरी, कोई एक याद, कोई एक बात जुड़ी होती है। सो कहते हैं दैट म्यूजिक इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, क्योंकि उस गाने को आप जब भी सुनेंगे यू विल फील कि यार याद है ऐसा कुछ हुआ था।

taken from the movie जब वी मेट, दैट वॉज तुमसे ही, राइट. एंड मैं आपको बताऊं कि दिस पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. यू नो, अगर टैक्स रिलेटेड आपको कोई भी ज्ञान चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, देन डेफिनेटली यू नीड टू रीच आउट टू एजी फिनटैक्स, क्योंकि ये ऑफर करते हैं आपके लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज, यू नो, विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. तो चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप खुद के लिए कुछ, आपको यू नो कुछ टेलर्ड सॉल्यूशंस चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन डेफिनेटली रीच आउट टू एजी फिनटैक्स. आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं, दे आर ट्रस्टेड, दे आर एफिशिएंट, एंड दे कैन गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. सो आप एजी फिनटैक्स को कॉल करें, द नंबर इज 4699429888, और यू कैन विजिट agfintax.com. द नंबर वंस अगेन फॉर एजी फिनटैक्स इज 4699429888, or visit agfintax.com. And the next song, well, that's taken from the movie मेरी प्यारी बिंदु, जिसमें देखे थे आयुष्मान खुराना and परिणीति चोपड़ा. And the song, well, it's a song request, माना कि हम यार नहीं. So, well, here it is. Enjoy.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
9: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
8: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
14: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Fun Asia Radio.

Well, that was अंबर सरिया एंड दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक, और अब एक गिव अवे आ रहा है आपके लिए, जहाँ आप जीत सकते हैं वन टिकट टू द कॉन्सर्ट विच इज कुमार सानूज अनफॉरगेटेबल 90s। तो डालस, यू नीड टू गेट रेडी फॉर अ नाइट फिल्ड विद टाइमलेस मेलोडीज, अनफॉरगेटेबल रोमांस एंड प्योर 90s का नॉस्टैल्जिया। जी हाँ, द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट आइकॉनिक लव सॉन्ग्स इज कमिंग लाइव टू प्लेनो। जी हाँ, प्लेनो में आ रहे हैं कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट अनफॉरगेटेबल 90s लेके ऑन सेप्टेम्बर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो। So sing along to the songs you grew up listening to and experience the magic of an era that still lives in our hearts. Bahut si limited seats available hain and free parking hai, exclusive meet and greet options bhi available hain. So book your tickets today at eventbrite.com and solekhatickets.com ya fir aap call kar sakte hain 214-869-2668. For more information, presented by Focus Entertainment and Fortune Group. Now, if you want to win a ticket for this concert, what you need to do is listen to the next song and tell me the two actors the song was featured on.

0: ऑलराइट, तो मैंने पूछा था कि आप मुझे बताएं कि इस गाने के वीडियो में कौन से दो एक्टर एक्ट्रेस दिखे हैं. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: यस, दिस इज हिमांशु पटेल, सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित.
0: सलमान खान,
1: संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित.
0: हाँ, बिल्कुल सही जवाब. तो संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित दिखे थे. बिल्कुल सही जवाब हिमांशु जी. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया ये कॉन्सर्ट का टिकट. आई एम गोइंग टू टेक यू ऑफ एयर, टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोइंग टू प्ले अनदर कुमार सानू सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स. तो आप होल्ड करिएगा.

कसम तो ना खाएं, मैं तो कहती हूँ अच्छा अच्छा खाना खाएं, तंदूरी फ्लेम जाएं। जी हाँ, तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में बता रही हूँ आपको। दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड एंड इज कंसिडर्ड द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स। चाहे आपको वो सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स खाने का मन हो रहा हो, या रिच करीज, या फिर आपकी वो नॉर्थ इंडियन फेवरेट डिशेज विद अ होम स्टाइल पंच, यू नीड टू गो टू तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट। चाहे फिर वो स्मोकी तंदूरी कबाब्स हों, या वेलवेटी करीज, या फिर गर्मा गर्म नान, एवरी प्लेट विल फील लाइक अ सेलिब्रेशन। सो किसी सेलिब्रेशन की वेट ना करते हुए एक नॉर्मल दिन को भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेट तंदूरी फ्लेम सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ फीस्ट। तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन गार्लैंड।

वेल दैट वॉज इश्क बिना, टेकन फ्रॉम द मूवी ताल. दिखे थे अक्षय खन्ना एंड ऐश्वर्या राय एंड ऑफ कोर्स अनिल कपूर. अच्छा, अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब गणपति बप्पा आ रहे हैं, एंड सो एक मज़ेदार एक कुछ एक्टिविटी होने जा रही है, उसके बारे में ज़रूर आपको साथ शेयर करूँगी मैं. वो ये है दैट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इंश्योर होम लोन्स एंड ओमार ख्वाजा प्रेजेंट मेक योर गणेशा विद फन एशिया नेटवर्क. जी हाँ, इस गणेश चतुर्थी को चिल्ड्रन एज्ड 5 to 12 ईयर्स ओल्ड कैन क्रिएट देयर ओन क्ले गणेशा एट अ फन फिल्ड वर्कशॉप ऑन सैटरडे September 12th. स्पॉट्स आर लिमिटेड, सो डू रजिस्टर योर किड्स टूडे एट ganesha.funasia.net एंड लेट योर लिटिल आर्टिस्ट क्रिएटिविटी शाइन. सो यू नीड टू रजिस्टर योर किड्स एज 5 to 12 ईयर्स ओल्ड एट ganesha.funasia.net एंड लेट योर लिटिल आर्टिस्ट क्रिएटिविटी शाइन.

0: Fresh Ravan celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: जीनी हुकम मेरी अकल, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
2: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
1: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
2: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
1: और एंटरटेनमेंट,
2: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
2: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
3: बेटा,

0: 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
1: हाँ।
0: प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
7: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
8: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Yeah, that was Ingat, taken from, of course, the movie Dhadak. And this is Madhulika लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जा कर रहे हैं हम, as the name suggest, just chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. एक और नाम जो आपको रखना है याद वो है अटर्नी ओमार ख्वाजा. वेल, दिस पार्ट ऑफ द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमार ख्वाजा, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमार ख्वाजा. अगर आप कहीं कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में इंजर हो जाते हैं या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट हो जाता है, देन यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन योर हीलिंग वाइल अटर्नी ओमार ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड यू पे नथिंग अनलेस यू विन योर केस. तो आप अटर्नी ओमार ख्वाजा को कॉल करें. द नंबर इज 4693005046 और यू कैन विजिट अटर्नी ओमार .com. दैट्स अटर्नी ओमार .com.

0: गई
1: कर
0: चुल।
1: गई चुल, दैट वाज टेकन फ्रॉम कपूर एंड सन्स। अच्छा एक और फन फैक्ट चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। शेयर होता है ना अक्सर कि अगर आप किसी को बोले कि देखो देखना मत अभी वहाँ, आपकी इंस्टिंक्ट होती है कि यू विल इमिडिएटली ट्राई टू लुक। ऐसा पता नहीं क्यों होता है बट होता ज़रूर है दैट व्हेन समवन सेज डोंट लुक, योर इमिडिएट इंस्टिंक्ट इज यूजुअली टू लुक। तो भाई अगर देखना ही है तो मैं कहती हूँ काला चश्मा लगा लें।

taken from the movie बार बार देखो, that was काला चश्मा. एंड बार बार देखने की जरूरत होती नहीं है एक्चुअली, पता है, क्योंकि जो आपका ब्रेन है ना, इट पिक्स अप फेमिलियर मूवमेंट पैटर्न्स, और इसीलिए शायद यू कैन रिकॉग्नाइज समवन यू नो फ्रॉम सरप्राइजिंगली फार अवे जस्ट बाय द वे दे वॉक. या अगर आप दूर से भी यू नो भीड़ में भी किसी को जो आप जिसको जानते हैं उसको वॉक करते हुए देखेंगे, योर ब्रेन विल पिक अप फेमिलियर मूवमेंट पैटर्न्स एंड रिकॉग्नाइज दैट पर्सन इन अ क्राउड इमीडिएटली. हाउ कूल इज दैट?

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: We need to talk.
7: अब क्या हुआ?
6: Nothing. It's not you.
7: Oh no.
6: It's the distance.
7: Distance? We live 10 minutes apart.
6: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
5: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: Now, sir, or price?
5: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
14: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
15: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
14: Fikar not. We have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled Play Ganesha Making Workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

सितार की इस बहुत ही खूबसूरत धुन के साथ प्यार भरा स्वागत आप सभी का इस म्यूजिकल जर्नी में। जी हाँ, मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी संडे 12 to 2 और 1 to 2 के बीच में ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ हिंदी में। जी हाँ, आपने मुझे अब तक सुना गुजराती में, अब मैं आपसे हिंदी में बातें करूंगी और हिंदी में आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है सुरीले लम्हे। कुछ लम्हे, कुछ पल आपके लिए सुर और संगीत से भरे हुए मैं लाती हूँ, जहाँ पर ये सेगमेंट में कोशिश होती है ज़्यादातर गैर फिल्मी होते हैं गाने, प्राइवेट एल्बम से हम आपको गज़ल तक ले चलते हैं, सूफी बैंड तक ले चलते हैं, कोई लाइव कॉन्सर्ट्स, वेब सीरीज की बातें, पाकिस्तानी ड्रामास के गाने, जो भी गाने फिल्मी नहीं है बिल्कुल आप सुनेंगे यहाँ पे। हालांकि पहला जो गाना होता है वो फिल्म से मैं बिल्कुल शुरुआत करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती हूँ गैर फिल्मी गानों की तरफ। तो चलिए प्रीतम साहब को याद कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये संगीत है उनका मेट्रो इन दिनों में, और कुछ उनकी बातें होती, कुछ संगीत की बातें, कुछ साज और आवाज की बातें, आप ही के साथ 2 PM।

प्रीतम जी का संगीत और प्रीतम के लिए बहुत कुछ अच्छा बुरा सब कुछ हम मीडिया में पढ़ते आए, राइट? एंड समटाइम्स व्हेन आई लिसन टू हिज सॉन्ग्स आई ऑलवेज थिंक कि यू नो ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड हुए होंगे, बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, 60s में भी होते थे, 70s में भी होते थे बाय वेस्टर्न म्यूजिक, और उनके गानों में कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं लगता था कि ये गाने पहले सुने हुए नोटेशंस वगैरह वगैरह, बट ऐसा नहीं है कि उनका ओरिजिनल काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, बिकॉज उनके गाने जब भी सुनते हैं ऐसा लगता है कि 2-3 साल में हम नहीं भूल जाते उनके गाने, चाहे आप पुराने बर्फी, यस आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर पुराने कौन से, बर्फी में उनका गीत था, जवानी दीवानी में उनका गीत था, ये जवानी है दीवानी में उनके गीत है, गैंगस्टर, ऐसे बहुत सारे गाने उन्होंने दिए जो आज भी हम याद करते, स्पेशली बर्फी सॉन्ग्स एंड मैनी मैनी मोर सॉन्ग्स, जब वी मेट आई थिंक इट्स ऑल्सो बाय प्रीतम. तो कभी कभी यू नो आई थिंक कि जब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाती है इन एनी इंडस्ट्री, इन एनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात हो या कोई भी इंडस्ट्री की बात हो, और जब लगता है कि अरे ये बंदा बहुत आसानी से आगे बढ़ रहा है, आई एम श्योर उनके भी कंपटीटर्स होंगे, उनके भी कुछ ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि उन्हें इतने अवार्ड्स ना मिले जितनी इतनी फिल्म्स ना मिले जितनी मिलती है, और कहीं ना कहीं ये बातें एज अ रूमर्स ऑल्सो जब एक बात बढ़ जाती है कि अरे ये तो कॉपी मास्टर है, तो नॉट नेसेसरली कि ऑलवेज उन्होंने कॉपी ही की होगी. मेट्रो इन दोनों में उनका संगीत था और उन्होंने जब अपनी पहली करियर की शुरुआत की थी जीत गांगुली के साथ की थी, वॉज नॉट द सोलो कंपोजर, जीत गांगुली करके इफ़ यू रिमेंबर देर इज़ अ कंपोजर, तो जीत और प्रीतम के नाम की जोड़ी में 2000-2001 में उन्होंने संगीत देने की शुरुआत की थी, लेकिन फिर दोनों की जोड़ी टूट गई थी एंड देन ही बिकेम अ सोलो कंपोजर और बन गए थे सिर्फ प्रीतम. कुछ ऐसे ही बातें आपके साथ, कुछ गजल की बातें, कुछ गैर फिल्मी गाने आपके लिए 104.9 FM.

पंकिनी गुप्ता की आवाज़ में हमसे तो वो बेहतर है जो किसी के ना हुए, हम जो शहर के थे उसी के ना हुए। बहुत ही खूबसूरत ये गज़ल जो है आपने सुनी। मुखबिर करके एक वेब सीरीज़ आई थी जिसके बार बार मैंने बहुत दफ़ा मैंने आपके साथ उसकी बातें की है, उसके गाने आपको सुनवाए हैं, जिक्र किया है। नाउ दैट वेब सीरीज़ इज़ एक्चुअली लाइक अ मूवी। जी हाँ, अगर आपको वेब सीरीज़ देखने की आप में इतनी धीरज नहीं है, एंड आई डोंट थिंक इट वॉज मोर देन 9 or 10 episodes, लेकिन फिर भी नाउ दैट होल वेब सीरीज इज लाइक मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई द मूवी। ऐसा टाइटल ही उसका, मुखबिर द मूवी। तो ज़रूर देखेगा, दैट इज़ ऑन Zee5। यस, आई बिलीव इट इज़ ऑन Zee5, विच वॉज अ वेब सीरीज। एंड ऑन दैट नोट, यू नो, आजकल आई थिंक ट्रेंड चल रहा है कि वेब सीरीज़ को मूवी में तब्दील किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कहीं पर सुना कि मिर्ज़ापुर, इफ़ यू हैव वॉच दैट सीरीज़, मिर्ज़ापुर इज़ नाउ कमिंग एज अ मूवी, जिसका नाम है मिर्ज़ापुर द मूवी। यस, द वेब सीरीज़ की बहुत सारे सीजन्स थे, राइट, 1, 2, 3, 4। नाउ दैट मूवी वुड बी ऑफकोर्स मोर नॉट मोर देन 2 hours or 2.5 hours। तो अगर आपने अभी तक उसकी कोई सीजन नहीं देखी है, मिर्ज़ापुर आपको देखनी थी वो सीरीज़, तो वेल, दिस इज़ योर चांस। आप देख सकते हैं मिर्ज़ापुर द मूवी।

आपने वो वर्ड सुना है हार्मनी, राइट? आपको पता होगा व्हाट इज हार्मनी. अगर उस वर्ड की लाइव एग्जांपल आपको देखनी है कि व्हाट इज अबाउट ऑल अबाउट हार्मनी, तो क्वायर कभी सुन लीजिएगा. जो अभी आपने ये गीत सुना, दैट वाज बाय रॉयल सिम्फनी क्वायर से आपने सुना, वेदर इट इज़ अ हिंदी सॉन्ग और एनी अदर सॉन्ग. लेकिन जब भी आप क्वायर को देखते हैं लाइव, मोर देन 50 इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, मोर देन 20 और 30 सिंगर्स, वोकल सिंगर्स ऑन द स्टेज, और सबके सुर एक साथ, सच एन अलाइंड थिंग फॉर एनी सिंगर. मैं अपने बहुत बड़ी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि फॉर एनी सिंगर आई डू सिंग, कभी भी क्वायर में गाना इट्स मोर डिफिकल्ट देन सिंगिंग सोलो. ये मेरी खुद की राय है, बिकॉज योर वॉइस, योर टोन, योर नोटेशन, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन हारमोनी. सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, राइट? अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, कभी कुछ आप बजाते होंगे, कभी अकेले आपने बजा लिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट वेन यू आर अलॉन्ग विथ अदर 50 मोर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, उनके साथ अलाइंड होना, सारे सा से लेके पधनी सा, सारे सुर एक साथ निकले, दैट इज़ वे मोर डिफिकल्ट. और इसीलिए जो क्वायर होती है, उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है, उनकी जो नोटेशंस होती है, उनकी जो हर एक बात होती है, इट इज़ सो अलाइंड. और तभी मैंने जैसे कि कहा कि अगर हारमनी क्या होती है, उसकी लाइव एग्जाम्पल इज़ क्वायर बैंड.

एस्पायरेंट सजी, हाँ ये है एक वेब सीरीज जिससे आपने ये गीत सुना लम्हा लम्हा, बहुत ही खूबसूरत ये सीरीज रही और उसकी बहुत सारी सीजन्स भी आ चुकी है। एस्पायरेंट्स अगर आपको अच्छी लगती है ऐसी सीरीज जरूर देखिएगा। और उसी बात पे होगा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, लेकिन ब्रेक में आने के बाद कुछ और भी वेब सीरीज की बातें होगी, कुछ अपकमिंग सीरीज की बातें होगी आपके होगी।

0: आपको अच्छी लगती है ऐसी सीरीज जरूर देखिएगा। और उसी बात पे होगा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, लेकिन ब्रेक में आने के बाद कुछ और भी वेब सीरीज की बातें होगी, कुछ अपकमिंग सीरीज की बातें होगी, आपके होंगे कॉल्स, आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी सीरीज आप देखते हैं भाई जो हमने अभी तक नहीं देखी, और आपकी रिकमेंडेशन हम भी देख लेंगे कौन सी सीरीज। ऐसी बहुत सारी बातें बिल्कुल होती रहेगी, लेकिन उससे पहले हम शुक्रिया अदा कर ले सीपीए सुधीर पाई का। जी हाँ, माई टाइम इक्विटी नंबर है उनका 4697021272। वंस अगेन इट इज़ माई 4697021272 एंड इट इज़ मिस्टर सुधीर पाई फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। वंस अगेन इट इज़ माई टाइम इक्विटी लेड बाय मिस्टर सुधीर पाई, तारा कमर्शियल एनर्जी सिंस 2002 विथ कम्पिटिटिव रेट्स। जी हाँ, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं टेक्सास बिजनेस ओनर्स के लिए खास स्मार्ट कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन एंड दैट इज तारा एनर्जी। नंबर है उनका 8444282808 और यू कैन विजिट taraenergy.com। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे शहर में आ रहे हैं। सितंबर में बिल्कुल दो कॉन्सर्ट्स होने वाली है, जिसकी एक की जानकारी मैं आपको कमर्शियल ब्रेक के बाद दूंगी, लेकिन कुमार सानू को बिल्कुल याद कर लीजिए हैं, क्योंकि वो है नेक्स्ट फ्राइडे सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो, दैट इज इन प्लेनो नेक्स्ट फ्राइडे सितंबर 11th। अगर आपको 90s के मेलेडी से बेहद प्यार है, कुमार सानू के गाने आप एक बार फिर से सुनना चाहते हैं लाइव, दैट इज ऑल्सो देन इट इज हैपनिंग ऑन सितंबर 11th। बातें होती रहेगी, गाने होते रहेंगे बिल्कुल, और आपके ढेर सारे कॉल्स, और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ बातें होगी हमारी वेब सीरीज अपकमिंग वेब सीरीज की बातें होगी, कुछ एग्जिस्टिंग जो अभी आप देख रहे हैं उसकी भी बातें कर लेंगे। आपके कॉल्स ज़रूर कीजिएगा मुझे और बताइएगा कि क्या क्या आप देख रहे हैं आजकल। पाकिस्तानी ड्रामास के भी बहुत सारे सजेशन आते हैं एंड आई ऑलवेज गो बाय दो सजेशन, सो बस 9722355555 कहीं मैं जाएगा। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड, जी हाँ दैट इज सैटरडेज 12 से 3 के बीच में एंड ऑन संडेज 12 से 2 के बीच में। 2 से 3 सैटरडेज आप मुझे सुनते हैं, कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति होती है हमारी, दैट इज कम्युनिटी राउंड अप एवरी सैटरडे एंड संडे 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर विथ मी योर होस्ट नीलम। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका और हमारा साथ एवरी वीकेंड।
1: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 9726188555। AG Fintax, your growth, our strategy.
6: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
9: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त थाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी।

0: तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

नेहा कक्कर की आवाज में ये हानी आप सुना आपने, बहुत ही खूबसूरत ये गीत। और 104.9 एफएम फनीशा, मैं हूँ नीलम आपके साथ। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जी हाँ, वार्म वेलकम हम कहते रहेंगे आपको, क्योंकि बाहर कितनी भी गर्मी हो, बाहर कितनी भी ठंड हो या बारिश हो, आपका प्यार भरा स्वागत रहेगा हमेशा यहाँ 104.9 एफएम। और ऐसे संगीत से, ऐसे गानों से हम आपके दिल के मौसम को कर देंगे बहार बहार। जी हाँ, लगेगा ही नहीं आपको कितनी गर्मी बाहर है, लगेगा आई एम श्योर लगेगा, लेकिन कुछ देरों तक संगीत में वो जादू है कि कितनी भी आपकी कितनी भी फरियाद क्यों ना हो, जिंदगी से शिकायतें क्यों ना हो, संगीत सारी चीज़ें आसान कर देता है। ऑन दैट नोट, सोनू निगम के अगर आप बहुत बड़े फैन हैं, सो वेल दिस इज़ योर चांस टू हियर हिम वंस अगेन लाइव इन कॉन्सर्ट। और ये कब हो रहा है? दिस इज़ हैपनिंग ऑन सितंबर 26th, 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। जरूर जाइएगा इफ यू लव सोनू निगम, इफ यू लव हिज वॉइस। 8:30 PM सितंबर 26th। जन्माष्टमी का त्यौहार जैसे ही जाता है, हमें लगता है कि बस अब गणेश उत्सव की तैयारी हो चुकी है ना। तो गणेश उत्सव में अगर आप आपके बच्चों के लिए कुछ क्रिएटिव करना चाहे, देन वेल फनीशा नेटवर्क आपके लिए ये मौका लेकर आया है। यू कैन मेक योर ओन गणेशा विथ फनीशा। और इसके लिए रजिस्टर अगर आप करना चाहे, यू कैन गो टू अवर सोशल मीडिया पेजेस एंड चिल्ड्रन एज 5 to 12 दे कैन मेक देयर ओन क्ले गणेशा। तो ये जो वर्कशॉप है, इट इज़ बाय फनीशा नेटवर्क ऑन सैटरडे सितंबर 12th। वंस अगेन, सैटरडे सितंबर 12th भूलिएगा मत। इट इज़ मेक योर ओन गणेशा बाय फनीशा नेटवर्क।

एपी दिलन वन वन 4.9 FM फनीशा रेडियो। अरशद वारसी जो है फिल्म करे ना करे लेकिन वेब सीरीज बहुत करते हैं। जी हाँ, OTT प्लेटफॉर्म पे जैसे कि वो छाए हुए हैं और उनकी एक और सीरीज आ रही है इन सितंबर, आई थिंक सितंबर, लेट सितंबर में आ रही है वो, प्रतीक गांधी के साथ। और ये होगी उनकी एक्शन क्राइम थ्रिलर, जहाँ पर वो बनेंगे विलन, खतरनाक विलन होंगे। और प्रतीक गांधी जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर, बहुत ही ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में आमने सामने दोनों होंगे। एंड जो सीरीज है उसका नाम होने जा रहा है घमासान। जी हाँ, घमासान में दोनों आमने सामने विथ प्रतीक गांधी एंड अरशद वारसी। एंड दिस इज अगेन रिलीजिंग समटाइम सोन 104.9 FM फनीशा रेडियो पे। कुछ गैर फिल्मी गाने, गैर फिल्मी बातें आप ही के लिए एवरी संडे टिल 2 PM। एंड मैं हूँ नीलम आपके साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड।

जाने क्या बात थी 104.9 FM फनीशा रेडियो। बहुत बहुत खूबसूरत गाने, लेकिन गैर फिल्मी गाने लाती हूँ आपके लिए ऑन 104.9 एवरी संडे, दैट इज़ बिटवीन 1 and 2 PM, और सैटरडेज जो मुलाकात होती है आपकी और हमारी 12 से 3 के बीच में होती है, जहाँ 2 से 3 के बीच में कम्युनिटी आउटरीच, और टिल 2 PM इट इज़ बॉलीवुड के गाने नगमे थीम बेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एक बार फिर से फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स। बहुत बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बात करके, और आप सभी की राय जानकर। बहुत कुछ आप हमें बताते हैं सीरीज़ के बारे में, ड्रामास के बारे में, वगैरह वगैरह, और हर दिन जो भी सेगमेंट होता है उसमें आपकी बहुत सारी राय, पार्टिसिपेशन, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज थोड़ी सी जल्दी आपसे इजाज़त ले रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए, लेकिन बिल्कुल मुलाकात होगी अगले शनिवार 12 बजे। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड एन्जॉइंग फनेशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
3: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया।
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
16: With music on your favorite radio.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
6: अरे वो केक आया क्या?
7: डीजे कौन हैंडल करेगा?
6: डेकोर वाले को कॉल किया?
7: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
6: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया?
7: ऑसम इवेंट्स?
6: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
8: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
6: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
9: कॉल नाउ एट 214-725-7466. 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
10: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
11: How may I help you?
12: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
11: Fear not, we have the perfect solution.
13: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
14: ये तारा वो तारा हर तारा.
15: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
16: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
17: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
18: Aaj se aaj, straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol. You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
19: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
20: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242.
21: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.

स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनाथ, एंड आई विल बी विद यू टिल 6 PM. टुडे इज द 6th ऑफ सितंबर 2026. इट्स ए संडे आफ्टरनून. सो ग्लैड यू कुड जॉइन अस. दिस पार्ट ऑफ आवर शो यानी के Non-stop 90s is brought to you by attorney Omar Khwaja. Ji haan, the law offices of Omar Khwaja, who are there for you if you get injured in a car or truck accident or a slip and fall incident. They are the ones who give you free consultation and don't charge you anything unless you win your case. So what's there to lose? Give them a call, 469-300-5046, or you can visit attorneyomar.com. Non-stop 90s mein janab aaj bari hai 1998 ki hit filmon ki. So sabse pehle number par aati hai wo film jisne dhoom macha di 1998 mein, and that was the movie Kuch Kuch Hota Hai.

या कुछ कुछ होता है फिल्म से लिया गया, ये गाना सुन रहे थे आप। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। करण जौहर ने डायरेक्ट की और लिखी ये कहानी, जिसमें थे शाहरुख खान, उनके साथ काजल, एज वेल एज रानी मुखर्जी, सलमान खान एंड सानिया, इज इट सानिया सईद, जी हाँ सना सईद, आई एम सॉरी आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ विजन प्रॉब्लम हियर। ऑफ कोर्स अनुपम खेर की एक्टिंग को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस मूवी इज दैट इट इज ए होलसम फील गुड मूवी, यानी के फैमिली फन, फैमिली फ्रेंडली फिल्में जो आजकल अब बनना बंद हो गई हैं, एटलीस्ट कम हो गई हैं। इस फिल्म को न सिर्फ नेशनल फिल्म अवार्ड मिला बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए, बल्कि 44th फिल्म फेयर अवार्ड पर भी इनको 8 अवार्ड्स दिए गए, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, एज वेल एज बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी इसी फिल्म ने जीता। सो काफ़ी सारे अवार्ड्स तो जीते जीते, पर इसको बनाने में तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे एंड इट पुल्ड इन 106 करोड़ राइट बैक इनटू द पॉकेट्स।

सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप सोल्जर फिल्म का टाइटल ट्रैक। सोल्जर फिल्म वॉज एन एक्शन थ्रिलर फिल्म जो कि अब्बास मस्तान ने मिलकर बनाई थी और ये 1998 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। इस गाने में बॉबी देओल और प्रीति जिंटा थे। वैसे इस फिल्म में राखी गुलजार, फरीदा जलाल, सुरेश ओबेरॉय और लेट्स सी आशीष विद्यार्थी भी थे। ऑलराइट, सो दिस इज नॉन स्टॉप 90s। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनाथ, एंड आज सेगमेंट पेश किया जा रहा है नॉन स्टॉप 90s का, जिसमें बारी है 1998 की हिट फिल्मों की। आइए अब चलते हैं उस फिल्म के गाने की तरफ जो टॉप 10 लिस्ट में तीसरे पायदान पर।

जसपिंदर नरूला को इस गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। टाइटल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म प्यार तो होना ही था। 1998 में रिलीज होने वाली ये फिल्म तीसरे पायदान पर है, एज इन द थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स ऑफ दैट ईयर। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ थी काजल एंड ओम पुरी, हु ऑल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हिज ग्रेट एक्टिंग इन द फिल्म। और इंटरेस्टिंगली इनफ ये एक्चुअली एक इंग्लिश फिल्म की रीमेक थी। इंग्लिश फिल्म का नाम था फ्रेंच किस, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वॉच्ड इट। एनीवे, नॉन स्टॉप 90s को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं फोर्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1998 के इस गाने की तरफ।

David Dhawan ho director, then the movie has to be a hit and it has to be a comedy. So was this one a buddy cop action comedy starring Amitabh Bachchan, Govinda, Raveena Tandon and Ramya Krishnan. Is film ko bhi logon ne bahut pasand kiya. It was a full on masala movie जिसे बनाने में तकरीबन 12 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन ओवर द कोर्स इट मेड 159 करोड़ रुपीस. क्या बात. यू आर लिसनिंग टू नॉन स्टॉप 90s ऑन 104.9 FM. दिस सेगमेंट ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलायबल कंपनी दैट कैन हेल्प यू विथ योर टैक्सेस एज वेल एज योर फाइनेंसेस, गिव देम अ कॉल 469-942-9888 or visit agfintechs.com. आज के इस नॉनस्टॉप 90s सेगमेंट का ये है पांचवां गाना, यानी के फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1998.

0: Very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
1: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आज सितंबर की 6 तारीख है, यानी कि 6th of September 2026. आज की डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि Today will be my last show for this session because I'm taking two weekends off. जैसे कि मैंने कल भी बताया था और आज फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि मैं जा रही हूँ उम्रा करने के लिए. उम्रा is a religious pilgrimage to मक्का और I feel very blessed and fortunate कि मुझे ये मौका मिल रहा है. और जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मेक श्योर करें कि आप सबको बताकर जाएं, बिकॉज़ कभी कभी कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनसे आप लौट कर नहीं आते. ऑफकोर्स दुआ तो ये है कि लौट कर वापस आऊं ताकि आप सब लोगों का इसी तरह मनोरंजन कर सकूं जैसे अब करती हूं, उसी तरह आपके साथ प्यार और दुआएं शेयर करती रहूं जैसे करती आ रही हूं कई सालों से. लेकिन फिर भी At the same time, I also want to apologize to anyone that I may have hurt. I'm really glad that I have this platform, 104.9 FM. कि मुझे एक-एक को अलग-अलग से कॉल नहीं करना पड़ा. मैं एक ही बार में सभी से माफ़ी मांग सकती हूँ. और कुछ गलतियाँ हम ऐसी करते हैं जो हमें पता होता है कि हमने गलती की, किसी का दिल दुखाया. पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने में हम कोई भूल कर बैठते हैं या किसी को तकलीफ दर्द पहुँचा देते हैं, इवन दो वी हैव नो इंटेंशंस. सो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप तमाम सुनने वालों से माजरत ख्वाह हूँ और माफ़ी चाहती हूँ अगर कभी मैंने किसी बात पर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपसे अच्छे से बात नहीं की, या मेरा लहजा ऐसा नहीं था जैसा होना चाहिए था. तो उसके लिए मैं दिली तौर पर आपसे माफ़ी मांगती हूँ. मैं नहीं चाहती कि जब मैं इस पिलग्रिमेज पर जाऊँ, इस उम्रा पर जाऊँ, तो पीछे किसी के भी दिल में मेरे लिए किसी भी किस्म का कोई भी कोई शिकवा हो, कोई नाराज़गी हो. सो आई वॉन्ट टू हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल टू फॉरगिव मी, टू फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव मी. और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपसे बजाते खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मैं उसके लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ. बिकॉज आई नो कि मैं माफ़ी मांगने से मैं छोटी नहीं हो जाऊँगी, बल्कि अगर उससे आपकी तकलीफ कम हो सकती है और यू फील बेटर इफ़ आई अपोलोजाइज टू यू, आई बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. बिकॉज दिस पिलग्रिमेज टू मी इज़ नॉट जस्ट a trip, it's not just just a visit, it's not just a duty, balki ye meri ek spiritual journey hai jis par is waqt main rawa dawa hu. And part of that is always seeking forgiveness from people that we may have hurt. So once again, I apologize to each and every one of you if there's anyone that I have hurt. And if you think you deserve a personal apology, you are more than welcome to call me right here, right now in the studio, 972-235-5555. मेरी यही दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से रहें, और ये भी दुआ है कि मैं इस पिलग्रिमेज को पूरा करके वापस आ सकूं, कुछ अच्छा सीख कर आऊं वहाँ से, कुछ अच्छा फील करके आऊं, और जब यहाँ आऊं तो होपफुली आई विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ अमरीन हसनात. आई कंटिन्यू टू बी आपकी होस्ट, आपकी दोस्त. Okay, that said, let's go back into our segment. जिसमें commercial break से पहले हमने गाना play किया था from the film प्यार किया तो डरना क्या. Main अदाकार इसमें थे सलमान खान as well as धर्मेंद्र, काजोल and अरबाज खान. इस film को nominations तो काफी सारी मिली थी, पर as such कोई award नहीं जीत पाई ये film. That being said, it still was the fifth highest grossing film of 1998. Non-stop 90s में आज हम आपको सुनवा रहे हैं 1998 की हिट फिल्मों के हिट गाने.

सुखविंदर सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप दिल से फिल्म का ये गाना, जो कि शाहरुख खान और मलाइका अरोरा पर पिक्चराइज किया गया था। इट्स एन आइकॉनिक डांस सीक्वेंस। इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि इस गाने में ये जो डांस कर रहे हैं चलती हुई ट्रेन पर शाहरुख खान साहब, ही डिड नॉट वेयर एनी सेफ्टी हार्नेस ड्यूरिंग द शूट, ताकि वो आराम से डांस कर सकें, मूवमेंट कर सकें, बिकॉज अगर उन्हें कोई हार्नेस बांधी भी होती तो वो सही से डांस नहीं कर पाते। दूसरी बात ये थी कि देर वॉज अ प्लान बी लोकेशन। सी ओरिजिनली जो टीम थी, दे वॉन्टेड टू शूट दिस सीक्वेंस एट अ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, लेकिन हुआ ये कि उनके वो परमिशन ही नहीं मिली और लास्ट मिनट उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी और उन्हें चलती हुई ट्रेन पर ये गाना कोरियोग्राफ और यू नो रिकॉर्ड कराया उन्हें। एंड ऑफ कोर्स कोरियोग्राफर थी फराह खान, एंड यू नो इट काइंड ऑफ वर्क्ड आउट। एंड अगर आपने ये मूवी देखी हो या आपको कुछ याद हो, तो दिस लेजेंडरी डांस सीक्वेंस वाज एक्चुअली फिल्म्ड ऑन द हिस्टोरिक मूविंग ट्रेन व्हिच इज वाइंडिंग डाउन द माउंटेन्स ऑफ ऊटी इन तमिलनाडु। और ये गुलजार साहब ने गीत के बोल लिखे थे, बट बेसिकली ही वॉज इंस्पायर्ड बाय बुल्ले शाह की पोइट्री। बुल्ले शाह ने लिखा था एक ट्रेडिशनल वर्स, इट इज तेरे इश्क नचाया। इनफैक्ट आई थिंक सुखविंदर सिंह ने ये गाया भी है, द सूफी वर्जन इज वेल, लेकिन दिस ऑफ कोर्स इज द सॉन्ग वर्जन। सो दिस सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी दिल से। दिल से वॉज अ थ्रिलर मूवी। हमारी तो खैर हर फिल्म में थ्रिल हो ना हो, प्यार मोहब्बत जरूर होता है, तो इस फिल्म में भी था। एंड इट बिकेम द सिक्स्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1998। नॉन स्टॉप 90s कंटिन्यू करते हैं इस अगले गाने के साथ।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म गुलाम का ये गाना। गुलाम वॉज एन एक्शन फिल्म विच वॉज डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट। इस फिल्म में आमिर खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे एंड दिस वॉज वेरी सिमिलर टू विशेष फिल्म्स की एक फिल्म आई थी 1988 में जिसका नाम था कब्जा। आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं, संजय दत्त थे उसमें। तो ये फिल्म काफ़ी हद तक उससे मिलती जुलती है। इनफैक्ट वो फिल्म भी एक दूसरी एक इंग्लिश फिल्म से इंस्पायर होकर बनाई गई थी और उससे पहले भी कुछ और भी, यू नो हाउ व्हाट हैपेंस इज लाइक देयर वुड बी एन ओल्ड फिल्म, उससे इंस्पायर होकर एक नई फिल्म बनती है, फिर उससे इंस्पायर होकर एक और फिल्म बनती है। सो देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस इन मेनी ऑफ द मूवीज दैट वी एंड अप वॉचिंग। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे बट द फिल्म वॉज एबल टू रिकवर एंड बी वन ऑफ द हिट फिल्म्स बाय मेकिंग ओवर 24 करोड़ रुपीस। इस फिल्म को नॉमिनेशंस तो काफी सारे मिले थे लेकिन इनाम सिर्फ बेस्ट सीन ऑफ द ईयर का मिला इन दिस फिल्म गुलाम। आइए कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, उससे पहले रियल क्विक अ शाउट आउट टू PMJ Jewels। हिंदुस्तान में तो इस नाम से सभी वाकिफ हैं लेकिन अब दे हैव अ स्टोर राइट हियर ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम ब्यूटीफुल ज्वेलरी, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, ब्राइडल कलेक्शन हो या कोई भी सेलिब्रेशन के लिए आपको ज्वेलरी चाहिए हो, हेड टू PMJ Jewelers इन फ्रिस्को। लेट्स कंटिन्यू आवर नॉन स्टॉप 90s।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे पर पिक्चराइज किया गया था फॉर द मूवी मेजर साहब, जिसमें मेजर साहब थे अमिताभ बच्चन और इस फिल्म में नफीसा अली भी थी। दिस वॉज एन एक्शन मूवी विच केम आउट बैक In 1998. It's 50 minutes past 3. मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी हिट गाने हैं, at least top 10 songs we should be able to play. So let's go ahead and keep it moving.

सोनू निगम और जसपिंदर नरुला की आवाज में सुन रहे थे आप ये हिट गाना टेकन फ्रॉम द 1998 ब्लॉकबस्टर दूल्हे राजा। ये गाना गोविंदा और रवीना टंडन पर पिक्चराइज किया गया था। दिस वॉज ए रोमांटिक कॉमेडी दैट ऑल्सो हैड जॉनी लिवर, कादिर खान, प्रेम चोपड़ा एंड असरानी। ऑफकोर्स ये सब लोग साथ हों तो कॉमेडी तो खुद ब खुद आ ही जाएगी। और अब लेकर चलते हैं हम आपको 1998 की 10th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म के गाने की तरफ। जी हाँ, यू गेस्ट इट राइट, इट्स चाइना गेट।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, jo aapko yahan pasand hai. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer, zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB, here everything is better.
7: We need to talk.
8: Ab kya hua?
7: Nothing, it's not you.
8: Oh no.
7: It's the distance.
8: Distance? We live 10 minutes apart.
7: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
9: Beta, 95% aaye?
10: Haan, mummy.
9: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
11: Mera?
9: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
16: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
19: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info, 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
10: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
11: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. I'll be with you till 6 PM today और उसके बाद अगले दो वीकेंड्स पर I will not be here. मैं उमरा के लिए जा रही हूँ तो अगले दो वीकेंड आपसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन जब लौट कर आऊँगी तो हम अपने सेगमेंट्स को यूं ही कंटिन्यू रखेंगे. It is 5 minutes past 4 on the 6th of September 2026. उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैर आफियत से हैं. तो जनाब, अब बारी है शब्द सेगमेंट की. याद ही होगा आपको, हमारे सेगमेंट में हम किसी एक वर्ड को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर उसी से रिलेटेड आपको सुनवाते हैं बेशुमार गाने, कुछ नए कुछ पुराने. शुरुआत हमेशा पुराने गानों से की जाती है, एज इन 50s, 60s, 70s और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते हम 20 एज इन 2000 के डेकेड में पहुंच जाते हैं. और अगर आप पहला गाना सुनकर ही गेस कर पाएं कि आज का वर्ड क्या है तो आप हकदार बनते हैं एक मज़ेदार इनाम के. आज का इनाम है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 फूड क्रेडिट टूवर्ड्स योर परचेस. सो अगर आप गेस करना चाहते हैं तो सुनिए ये गाना और बताइए कि आज का वर्ड क्या हो सकता है. ये भी बताती चलूं कि जो भी वर्ड है वो पहली दो तीन लाइनों में ही होगा, एज इन गाने के मुखड़े में. सो गौर से सुनिए, गेस करने की कोशिश कीजिए और आप एक बार से जायद बार कॉल कर सकते हैं, एज इन यू कैन कॉल अस मल्टीपल टाइम्स टू ट्राई गेसिंग द वर्ड. यानी कि अगर आपने एक बार कॉल की और जवाब सही नहीं तो आप फिर से कॉल नहीं कर सकते. यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल अगेन एंड अगेन टिल यू गेट इट राइट. 972-235-5555. लेकिन इनाम तो उसी को मिलेगा जो हमें सही जवाब देगा, वो चाहे पहली बार में हो या दूसरी. 972-235-5555. हमारा पहला गाना 1955 की फिल्म श्री 420 से लिया गया है.

राज कपूर और नरगिस पर पिक्चराइज किया गया ये गाना सुन रहे थे आप लता जी की आवाज में. इट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म श्री 420 एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स. हाउएवर हमारा आज का इनाम मिल रहा है राज को. बिल्कुल सही गेस किया उन्होंने. आज का वर्ड है इकरार. तो आज जितने भी गाने आप सुनेंगे उनमें आपको ये लव्स कॉमन दिखाई देगा. विन किया उन्होंने चंडीगढ़ बाइट से. नाउ स्पेशलिटी है चंडीगढ़ बाइट्स की कि मंडे थ्रू फ्राइडे दे ऑफर द स्पेशल थाली, राइट? एंड लेकिन ये जो लंच थाली है रोज अलग होती है, एज इन उसमें जितने भी आइटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो अगर आप मंडे को वहाँ थाली खाएं और फिर वेंसडे को दोबारा जाएं तो यू आर नॉट गोना बी रिपीटिंग द डिशेज दैट यू ट्राइड ऑन मंडे. सो डू चेक इट आउट. दे आर लोकेटेड इन एलन राइट ऑफ मैकडर्मट ड्राइव. दैट्स चंडीगढ़ बाइट्स. आइए शब्द सेगमेंट कंटिन्यू करते हैं और सुनते हैं इकरार भरे गीत.

सुन रहे थे आप ये सुरीला सा गीत आशा भोसले की आवाज़ में, साथ में महेंद्र कपूर की आवाज़ भी थी। ये गाना 1965 में रिलीज हुई फिल्म वक्त से लिया गया था और शर्मिला टैगोर और शशि कपूर पर पिक्चराइज किया गया था। एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूँगी राज साहब को, जिन्होंने बिल्कुल सही गेस किया आज का शब्द, आज का वर्ड, आज का लफ्ज़ है इकरार। इसलिए आज हम जितने भी गाने प्ले करेंगे उनमें आपको ये वर्ड सुनाई देगा। जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत होती है पुराने गानों से और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अभी भी हम 60s में अटके हुए हैं। लगता है 60s में इकरार कुछ ज्यादा हुआ।

ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना, जो कि फिल्म जब जब फूल खिले से लिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने शुरुआत की 50s से, फिर 60s, और अब हम पहुंच गए हैं 70s तक। शब्द सेगमेंट के तमाम गाने मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, बिकॉज देयर इज अ नाइस वैरायटी, नॉट जस्ट फ्रॉम द टाइमलाइन पर्सपेक्टिव, बट आल्सो द टाइप ऑफ सॉन्ग्स दैट वी आर प्लेइंग।

मोहम्मद रफी साहब का ये पुरसोज गीत 1974 में रिलीज हुई फिल्म ठोकर से लिया गया था। देयर इज अ फ्यू जस्ट ट्यूनिंग इन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड मैं भी बहुत दिल से आपके लिए इस प्रोग्राम को पेश कर रही हूँ। शब्द सेगमेंट्स में कोई एक वर्ड सेलेक्ट करके हम उसी से रिलेटेड आपको सुनवाते हैं बेशुमार गाने। आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि 70s से अब आइए चलते हैं 80s की ओर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द 1982 हिट शक्ति. आई होप ये गाना आपने एंजॉय किया एंड जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू गाइस दैट बिसाइड्स रेडियो आई डू हैव अ फुल सर्विस इवेंट कोऑर्डिनेशन कंपनी जिसका नाम है ऑसम इवेंट्स. सो अगर आप अपने इवेंट को ऑसम बनाना चाहते हैं आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई कैन हेल्प यू विद द इंटायर इवेंट. अब वो चाहे छोटी सी बर्थडे पार्टी हो, वेडिंग हो, कॉर्पोरेट इवेंट हो, कुछ भी हो, आई कैन हेल्प यू कंप्लीटली और आई कैन हेल्प यू पार्शली. कभी कभी ऐसा होता है कि सारी तैयारी आपने खुद कर ली होती है एंड यू जस्ट नीड समवन ऑन द डे ऑफ द इवेंट टू ओवरसी एवरीथिंग एंड मैनेज द इवेंट, मेक श्योर दैट इट्स एक्सिक्यूटेड द वे दैट यू वांट. वेल, आई कैन हेल्प यू देयर. आई हैव एन ए टाइप पर्सनैलिटी. आई एम ऑल अबाउट मैनेजमेंट. सो अगर आपको ऐसी कोई भी मदद चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं. 214-725-7466 मेरा डायरेक्ट नंबर है. दैट इज 214-725-7466. वैसे आप यहाँ स्टूडियो में कॉल करके भी ले सकते हैं दोबारा मुझसे इन केस यू आर ड्राइविंग. एंड ऑल्सो वी स्पेशलाइज इन एंटरटेनमेंट सर्विसेज. तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए हो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल मी. एंड अगर आप चाहें तो आई कैन ऑल्सो ऑफर प्रोफेशनल एमसी सर्विस फॉर योर इवेंट. यानी कि आमतौर पे लोग अपने रिश्तेदारों को, कजिन्स को, इसको उसको कहते हैं, फिर क्या होता है वो उन बेचारों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द इवेंट एज मच. वेल, नोइंग मी दैट आई हैव बीन ऑन द रेडियो फॉर ऑलमोस्ट 27 समथिंग ईयर्स, सो यू नो दिस इज समथिंग दैट आई डू वेल, एटलीस्ट सो आई होप. सो अगर आप चाहते हैं कि आपके इवेंट को चार चांद लग जाए, सो आई बी मोर देन हैप्पी टू MC your event. Once again, mera number note kar lijiye, 214-725-7466. Aaiye ab segment ko continue karte hain, as in shabd segment ko, aur chalte hain agle 80s ke gaane ki taraf.

आशा भोसले की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना 1987 की फिल्म मददगार से लिया गया था, जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित पर पिक्चराइज किया गया था। और अब आइए चलते हैं राम अवतार के इस गीत की तरफ। वंस अगेन शब्द में आज का वर्ड, आज का लफ्ज़, इकरार।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
6: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
7: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
6: Kaise?
7: Page 3 eatery?
6: No, not another restaurant again.
7: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
6: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं.
8: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज़ फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
15: तुमसे मिलके दिल का है.
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS.

कोई वादा कोई इकरार ना किया। सुन रहे थे आप पाप का अंत से लिया गया ये गाना, जो कि गोविंदा और माधुरी पर पिक्चराइज किया गया था। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड आई बी विथ यू till 6 PM. It is now 37 minutes past 4 और शब के सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ने। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या आप आउट ऑफ नेटवर्क हैं तो भी आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के क्लिनिक में जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ ग्रेट प्लान स्टार्टिंग एट ओनली $85 अ मंथ। इस मेंबरशिप के जरिए नॉट ओनली विल यू गेट द प्राइमरी केयर विजिट्स बट ऑल्सो फॉलो अप एंड प्रिवेंटिव केयर। इनफैक्ट क्रॉनिक डिजीज या कोई वेट मैनेजमेंट और टेली हेल्थ और इसके अलावा केयर कोऑर्डिनेशन, आपको सब कुछ मिलेगा इस प्लान में। प्लस यू गेट 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। नाउ यहां मैं आपको सारी डिटेल्स नहीं दे पा रही, बट द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज टू कॉल देम at 214-666-6259 या फिर आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं passionhealthphysicians.com। ये प्रोग्राम कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन इट डज गिव यू ऑल द बेनिफिट्स ऑफ एन इंश्योरेंस प्लान। शब्द सेगमेंट में जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा आज का वर्ड, आज का लफ्ज है इकरार। सो जितने भी गाने आज आप सुनेंगे उनमें आपको ये लफ्ज कॉमन सुनाई देगा। आइए कंटिन्यू करते हैं सेगमेंट को और लेकर चलते हैं आपको, आई बिलीव ये 90s की फिल्म का गाना है।

साधना सरगम की आवाज में सुन रहे थे प्लेटफॉर्म फिल्म से लिया गया ये गाना। आइए अब लेकर चलते हैं आपको अजय देवगन और टबू पर पिक्चराइज किए गए इस गीत की तरफ।

मनीषा कोराला पर पिक्चराइज किया गया ये गाना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सुन रहे थे आप. इट्स टेकन फ्रॉम द 1996 फिल्म अग्नि साक्षी. इट्स 46 मिनट्स पास्ट 4. अगर अभी अभी आपने रेडियो ऑन किया है तो आपका स्वागत करती हूँ. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई बी विथ यू टिल 6 PM. शब्द सेगमेंट्स में हमारे आज का वर्ड है इकरार. इसीलिए जितने भी गाने आज आप सुनेंगे एटलीस्ट विद इन दिस आवर विल बी ऑल रिलेटेड टू दैट वर्ड एज इन इकरार.

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की सुपर डुपर हिट फिल्म धड़कन से लिया गया ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप इस पार्ट ऑफ आर सेगमेंट शब्द जिसमें आज का वर्ड है इकरार।

प्यार कर इकरार कर हमराज फिल्म से लिया गया ये गाना अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना पर पिक्चराइज किया गया था. आई होप यू एंजॉयड इट. दिस नेक्स्ट ट्रैक इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट.

नेहा शर्मा और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर पिक्चराइज किया गया ये गाना स्टीवन बेन की आवाज में सुन रहे थे आप। टाइम फॉर अस टू रैप अप द शो, यानी कि एटलीस्ट ये शब्द वाला सेगमेंट जिसमें इकरार रिलेटेड बेशुमार गाने हमने आपको सुनवाए। अब आखिरी में हम एक बार फिर इकरार करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और इसीलिए आपके लिए पेश करते हैं दिल से का ये प्रोग्राम हर सैटरडे और संडे को बिटवीन 3 and 6 PM। जैसे कि मैंने पहले बताया, फिर से रिमाइंड करती चलूं, आई विल बी लीविंग फॉर उमरा नेक्स्ट वीकेंड, सो नेक्स्ट 2 weekends आई विल नॉट बी हियर, बट आई विल मिस यू गाइज एंड कीप यू इन माई प्रेयर्स।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
8: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: ये तारा वो तारा हर तारा
8: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
14: जीनी हुकम मेरे आका हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
15: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
15: नो प्रॉब्लम आका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
14: और एंटरटेनमेंट
15: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
14: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
15: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
0: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
16: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

सलाम नमस्ते का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप, जो कि कुणाल गांजावाला और वसुंधरा की आवाज में था। ये गाना सैफ अली खान, अरशद वारसी और प्रीति जिंता पर पिक्चराइज किया गया था। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग, दिस इज अमरीन हसनात। इट्स 7 minutes past 5 ऑन द 6th of September 2026। इट्स अ संडे इवनिंग। आई एम सो ग्लैड यू कुड जॉइन अस टुडे, एंड फॉर दोज ऑफ यू हैव बीन इन DFW फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम श्योर यू रिमेंबर आवर स्टेशन which was also called Salam Namaste. In fact, 104.9 FM ki shuruaat Salam Namaste radio se hui thi, which started back in, I believe it was June of 2006. और पहली आवाज़ मेरी आवाज़ थी 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी पर अंडर द बैनर ऑफ सलाम नमस्ते। सो दिस हो सॉन्ग इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी, क्योंकि जब भी ये गाना सुनती हूँ वो पुराना रेडियो स्टेशन याद आ जाता है। लेकिन उसके बाद से फन एशिया ने जीत लिए डैलस वालों के दिल बाय ब्रिंगिंग इन ग्रेट एंटरटेनमेंट 24/7, एंड वी कंटिन्यू टू डू दैट फॉर ईयर्स टू कम। So, अब बारी है हमारे खान स्पेशल की। We had started last Sunday with सैफ अली खान और उनकी हिट फिल्मों के गाने। I have a great selection lined up for you. I promise you won't be disappointed.

बिपाशा बासु पर पिक्चराइज किया गया ये गाना सुनीति चौहान की आवाज में सुन रहे थे और दूसरी मेल वॉइस वॉज सुखविंदर सिंह एंड दिस वॉज ऑल्सो a movie where Saif Ali Khan did a great job. वैसे तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 90s से की थी लेकिन once दिल चाहता है became a blockbuster hit, I think उनका करियर भी एक और आगे की तरफ बढ़ गया as in it did better than it ever had. Omkara was a film where he really proved his worth and his battle against all the other actors who were in it. And here's yet another hit with Saif Ali Khan.

नीरज और मोनाली ठाकुर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम सैफ अली खान्स फिल्म रेस, जिसमें ये गाना उन्होंने पिक्चराइज किया कैटरीना कैफ के साथ. लेट्स कंटिन्यू विद द खान स्पेशल, मूविंग ऑन टू दिस ट्रैक फ्रॉम द फिल्म टशन, और इसमें देख सकते हैं आप सैफ अली खान की टशन, आवाज सुखविंदर सिंह.

करीना कपूर और सैफ अली खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना टशन फिल्म से लिया गया था. होप यू गाइस एंजॉयड इट. वेल देयर इज गोइंग टू बी सम मोर टशन दैट यू विल गेट टू सी. और इस बार टशन होगी कुमार सानू की एज ही ब्रिंग्स द अनफॉरगेटेबल 90s टू डैलस. आपके तमाम फेवरेट गाने आप लाइव देख सकेंगे, सुन सकेंगे बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक सिंगर यानी के कुमार सानू को लाइव इन कॉन्सर्ट. ये इवेंट होने जा रहा है सितंबर 11th को एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इवेंट सेंटर इन प्लेनो. यू गेट टू सिंग अलोंग एंड एंजॉय एंड एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ एन एरा दैट स्टिल लिव्स इन आवर हार्ट्स. नाउ यू कैन गेट योर टिकट्स बाय विजिटिंग eventbrite.com और ऑल्सो sulekhatickets.com या फिर आप कॉल कर सकते हैं 214-869-2668 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. दिस इवेंट इज प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप.

All right, what a beautiful song taken from the film Qurbaan. आवाज थी सोनू निगम की, जो बहुत जल्द होंगे डैलस में. Keep listening, stay tuned, and we'll share all the details. अब लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक. When we come back, we will continue the Khan special, जिसमें अब हम पहुंच गए हैं 2011 तक. सैफ अली खान की हिट फिल्मों के गाने आपको आज के इस सेगमेंट में हम सुनवा रहे हैं, एंड आई होप यू एंजॉय.

0: अब हम पहुंच गए हैं 2011 तक। सैफ अली खान की हिट फिल्मों के गाने आपको आज के इस सेगमेंट में हम सुनवा रहे हैं, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेगमेंट ऑन फन एशिया रेडियो।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
6: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
5: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
7: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 pm to 3 pm. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
2: Wait, na sab aur price?
3: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
4: Main hi do it ho.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
2: अजी सुनते हो?
7: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
8: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: बोलते क्यों नहीं?
1: सीधे पॉइंट्स पे आओ ना। सैफ अली खान की फिल्म आरक्षण से लिया गया था ये गाना, जिसमें उनके साथ थी दीपिका पादुकोण। यू आर लिसनिंग टू द खान स्पेशल, वेयर वी आर शोकेसिंग सॉन्ग्स फ्रॉम सैफ अली खान्स मूवीज़।

श्रीधर की आवाज में सुन रहे थे आप कॉलर ट्यून. दिस सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म हम शकल्स. होप यू एंजॉयड इट एंड वांट यू टू मार्क योर कैलेंडर्स बिकॉज Well, your Lucian concert exclusive media partner is Funasia Network. इस इवेंट के टिकट्स आपको टिकट मास्टर पे मिल जाएंगे या फिर आप कॉल कीजिए 855-360-SHOWS. That's 855-360-SHOWS. You're listening to the Khan special. आज के खान हैं सैफ अली खान.

And that was Jazzy B, Jine Mera Dil Lutya. The song was taken from Saif Ali Khan's newer movies, Jawani Jaane Mana. I hope you guys enjoyed this song and all the others that I played for you today. Ek baar phir sunne walon ko remind karti chalun ki agle do weekends aapki hamari mulaqat नहीं होगी because I am taking a pilgrimage to Makkah. I'm going for Umrah. So I'll be gone for 2 weekends. And once again, I want to apologize to anyone and everyone who may have been hurt by me. जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, मुझसे कोई गलती हुई हो जिससे आप हर्ट हुए हो, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ और माफ़ी मांगना चाहती हूँ. बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जब मैं इस सफ़र पर निकलूँ तो पीछे कोई ऐसा शख्स हो जिसके दिल में मेरी तरफ से या मेरी वजह से कोई तकलीफ हो या कोई दुख हो. सो वंस अगेन आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव मी, टू यू नो क्लियर योर हार्ट. लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपसे पर्सनली माफ़ी मांगनी चाहिए, I would be happy to do that. I think aapke paas studio ka number hai. You can call me here at 972-235-5555. Apne taur pe to mujhe nahi lagta ki maine kabhi kuch aisa kiya hai ki janbujh ke kisi ko takleef pahunchaun. Lekin sometimes, you know, we don't know and we make these mistakes. So before I leave for Umrah, I want to make sure that I have asked everyone for forgiveness so that my Umrah, my pilgrimage, my prayer is accepted. Aur is aakhri gaane ke saath chahungi aapse ijazat, and aapse ab mulaqat hogi 2 weekends ke baad, yani ke end of September. This is Amreen Hasnat signing off for Dil Se.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
8: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
9: We need to talk.
10: अब क्या हुआ?
9: Nothing. It's not you.
10: Oh no.
9: It's the distance.
10: Distance? We live 10 minutes apart.
9: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
11: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
12: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
14: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
15: 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कल हिंदी हिंदी बोल।
16: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
17: Call Navnita Khemka at 347-449-4242.
15: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242।
18: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s। September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info, 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
17: डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? हाँ जी, इट इज संडे एंड दिस इज योर बेस्टी इपी द हिपी. हाँ, मैं अपने नॉर्मल डे से अलग डे पर आई हूँ, लेकिन आई एम श्योर इट इज अ वेरी वेरी वेरी वेलकम. हाउ आर यू गाइस ऑल डूइंग टुडे? आज शाम के कितने बजे? 6 बजे है ना? हाँ जी भाई, 6 बजे हैं. आई होप यू आर चिलिंग. संडे इज लाइक चिलिंग टाइम एंड आई होप यू गाइज आर गेटिंग सम गुड फूड, enjoying your little weekend, and I hope you're having a wonderful rest of your Sunday. Kal fir se Monday hone wala hai. Kal hum aayenge apni normal bakbak karne, lekin aaj ke liye we're just gonna have some fun. So let's get this show on the road.

वो गाना जो आपने सुना, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक्स. इट्स कॉल्ड सोन छड़ी, और आपने सुना था वो नेहा कक्कड़, डिग्वी और कमला देवी की आवाज में. इट इज सच ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पहाड़ी म्यूजिक फ्रॉम उत्तराखंड मीट्स मॉडर्न अरेंजमेंट्स, R&B इन्फ्लुएंस, एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड की यू नो क्वीन ऑफ बॉलीवुड, पावरफुल वोकल्स. यस, नेहा कक्कड़. आई लाइक दैट सॉन्ग स्पेशली क्योंकि नेहा कक्कड़ की आवाज़ नॉर्मली इतनी पावरफुल है, और जो भी गाने वो गाती है वो हमेशा देर आर नो वेरी हाई नोट्स एंड इट्स सो लाइक ऑन द हायर साइड. बट दिस वन वी एक्चुअली गेट टू हेयर नेहा कक्कड़ की आवाज़ इन अ होल डिफरेंट कलर. इट्स मोर चिल, इट्स मोर रिलैक्स, दर समथिंग वेरी सेक्सी अबाउट दैट साउंड. ओके, आई पर्सनली लव इट एंड आई होप यू एन्जॉय दैट वन टू. दैट वॉज सोन छड़ी. भाई मूविंग ऑन फ्रॉम द सॉन्ग, अगर आपको पता है ना भाई गणेश चतुर्थी आने वाली है. ऑफकोर्स सबको ही पता है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, एंड आई होप यू गाइज हैव ब्रॉट योर गणेशाज होम. एंड यहाँ हमारे फनी एशिया के ऑफिस में तो बड़ा अच्छा सा गणेश जी का मूर्ति बाहर लगी हुई है, वहाँ पे रोज सुबह पूजा वूजा भी होती है एंड एवरीथिंग. लेकिन गाइज आपको पता है फनी एशिया के साथ एक और तरीके से आप गणेश चतुर्थी मना सकते हो. वो पता कैसे है, अगले सैटरडे को सितंबर 12th फनी एशिया इज ऑर्गेनाइजिंग इन पार्टनरशिप विद ऑफकोर्स Passion Health Primary Care, Insure Home Loans and Omar Khwaja. And what is happening next week? It is Make Your Own Ganesha with Fun Asia Network. Yes, it is a little beautiful little clay workshop that Fun Asia is organizing for children. So I'm sure Sunday ki shaam hai, abhi apne bachcho ke saath ghoom rahe ho. Agar aap radio bhi sun rahe ho saath mein and you're driving around and you think that you want to register for this clay workshop where you get to make your own Ganesh. This is for kids ages 5 to 12 and this is happening on September 12th. Spots bahut kam hai, so make sure you register today at ganesha.funasia.net. Let me say that again for you, ganesha.funasia.net, and let your child's inner creativity shine. Theek hai guys, mere paas ek choti si call aa rahi hai, aap tab tak ye gana suniye and we will be right back.

0: डू यू नो दैट सॉन्ग गाइज? अगर आपको नहीं पता, दैट सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी आर चीज. भाई कुछ सालों पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मे बी अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, जोया अख्तर, ऑफकोर्स फरहान अख्तर की बहन, जावेद अख्तर की बेटी, यू नो, शी हैज सम एक्सपीरियंस इन डायरेक्टिंग मूवीज. सो शी इज डन लक बाय चांस, एक बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत टाइम पहले आई थी. और दिस वॉज अनदर मूवी दैट शी डायरेक्टेड, इट्स कॉल्ड आर्ट चीज. अगर आपने नहीं देखी है, यू कैन चेक इट आउट. ऑल दो पर्सनली आई थिंक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. बचपन में हमने सब ने आई एम श्योर आर्ची की कॉमिक्स पढ़ी थी. चाचा चौधरी वगैरह के अलावा भी आर्चीज की ना एक कॉमिक्स आती थी. वो इट वॉज बेसिकली लाइक एन अमेरिकन कॉमिक बेस्ड इन दिस लिटल टाउन कॉल्ड रिवरडेल, एंड देर वॉज आर्ची एंड बेटी एंड वेरोनिका एंड जग हेड एंड रेजी, एंड देर ऑल दीज foreign characters which is very different from our Indian culture, but however it was a very entertaining high school comic, so it was okay, it was not too bad. So Zoya Akhtar ne uske upar movie banayi, of course featuring the ultimate nepo kids, featuring Shah Rukh Khan ki beti Suhana Kapoor, Shri Devi ki beti Khushi Kapoor, and some more male characters as well jinka naam mujhe abhi yaad nahi aa raha. गाने उसके बड़े अच्छे हैं मूवीज के. आई हैव टू टेल यू ऑल द सॉन्ग्स आर सुपर कैची एंड सुपर फन. हाउएवर द मूवी इट्सेल्फ एंड नॉट सो मच. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. और क्योंकि संडे का दिन है, आई एम श्योर यू गाइस आर बिजी एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर इवन लिसनिंग, इसीलिए आई कैन बी अनअपोलोजेटिक एंड दैट इज व्हाई आई रियली डोंट लाइक दैट मूवी, एंड दैट्स ओके, वी आर ऑल अलाउड टू हैव आवर ओपिनियंस, राइट? तो अगर आपको मूवी देखनी है, इट्स कॉल्ड आर्चीज, यू कैन चेक इट आउट. हाउएवर द वन थिंग दैट आई रियली लाइक इन दैट मूवी, देयर इज एक्चुअली अनदर एक्ट्रेस, और उसका ओरिजिनल नाम तो है अदिति सैगल, बट पीपल उसको प्यार से डॉट बोलते हैं. शी इज एक्चुअली एन इंडी म्यूजिशियन हु इज बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे. एंड फन फैक्ट ये है कि जब मैं इंडिया में थी एंड वन आई वॉज टीचिंग, शी वॉज एक्चुअली अ स्टूडेंट इन द म्यूजिक स्कूल दैट आई वॉज टीचिंग, एंड टू सी हर ब्लॉसम इन टू दिस इनक्रेडिबल म्यूजिशियन एंड एन एक्ट्रेस इज रियली नाइस. सो आई रियली लाइक्ड हर रोल, बट शी हैड अ वेरी स्मॉल रोल इन द मूवी. आई विश शी हैड मोर, बिकॉज शी वॉज अ मच बेटर एक्ट्रेस देन एनी ऑफ द अदर किड्स, नेपो किड्स, राइट? तो वी आर गोइंग टू अ ब्रेक इन अबाउट 10 seconds. वेन यू कम बैक, then we're gonna talk some more, okay? Here we go. 3, 2, 1, and...
1: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th.

0: exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: Hello Texas Parivar. क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: साथिया। कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
10: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
11: तुमसे मिलके दिल का है।
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
10: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
12: आई गॉट अ लिटिल रिक्वेस्ट फॉर, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर समबडी हैज रिक्वेस्टेड देवा, ओम देवा। फन फैक्ट, मुझे ये गाना पता भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी से है। उन्होंने बोला हम पांच मूवी से, मैंने कहा हम पांच, तो मुझे सीरियल पता था जो 90s में आता था, हम पांच पम पम पम पांच, है ना, लेकिन मुझे मूवी का नाम नहीं पता था। बट मूवी का नाम एक्चुअली ब्रह्मास्त्र है। तो ये आपके लिए, आप जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया।

गाइज एंड वी आर बैक। भाई संडे का दिन है, ट्रैफिक तो वैसे भी नहीं होने वाला है कहीं पे, लेकिन अगर आप ट्रैफिक में कहीं फंस जाते हैं एंड बाय चांस आपकी एक्सीडेंट हो जाती है किसी और गाड़ी के साथ एंड यू फेस्ड एन इंजरी या फिर अ ट्रिप एंड फॉल इंसिडेंट और सम काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट वेयर यू नो यू हैव एक्चुअली बिन हर्ट, देन यू नीड टू कॉल द ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा। दे आर ए पर्सनल इंजरी अटर्नी एंड दे कैन हेल्प यू गेट द फुल कॉम्पेंसेशन दैट आपको डिजर्व होता है एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गिव योर इन्फॉर्मेशन एंड लेट हिम फाइट द केस फॉर यू। और अगर आप जीत जाते हैं देन आपको तो पैसा मिलेगा, आपको क्या टेंशन है, ठीक है। यू कैन फोकस ऑन हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आप नहीं जीतते हैं केस तो आपको ओमर जी को कोई पैसे नहीं देने की जरूरत है बिकॉज दैट इज हिज जॉब एंड ही डजंट चार्ज अनलेस यू एक्चुअली विन द केस। एग्जैक्टली गाइज, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो उनका नंबर है 4693005046 और यू कैन विजिट attorneyomer.com। भाई 6:44 बज चुके हैं, मैं आपके साथ सिर्फ आज 8 बजे तक होने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको मेरा शो पसंद आ रहा है जो मेरे संडे के लिसनर्स हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं संडे होती नहीं हूँ, आई एम जस्ट फिलिंग इन फॉर समवन, अगर आप वंडर कर रहे हैं कि ये कौन है भाई, कौन बोल रहा है, गाइज दिस इज इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM। एंड नॉर्मली मेरा शो होता है एन इवनिंग इन डैलस, विच टेक्निकली संडे शाम को भी है एन इवनिंग इन डैलस। एग्जैक्टली गाइज, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है देन ट्यून इन कल परसों, देन वेंसडे एंड थर्सडे, बिकॉज टुमारो एंड ऑल द वे अप टिल थर्सडे वी डू अ लिटल सेगमेंट ऑन आर शो ऑन मॉडर्न रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स रिलेटेड टू डेटिंग एप्स, फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स और यू नो ट्विन फ्लेम्स, वट एवर इट इज, वी टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। अगले हफ्ते का, एक्चुअली इस हफ्ते का हमारा थीम है, हमारा थीम है रिलेशनशिप्स एंड नर्वस कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली, तो जस्ट ट्यून इन, इट इज गोइंग टू बी, ओ या सॉरी, नॉट नर्वस कॉन्शियसनेस, माई अपोलॉजीज, इट इज रिलेशनशिप्स एंड न्यूरो साइंस, दैट्स वॉट आई वॉज गोइंग फॉर द एग्जैक्ट वर्ड, आई वाज लाइक मैं क्या बोल के रही हूँ। तो रिलेशनशिप्स एंड न्यूरो साइंस, अगर आपको इस बारे में और भी जानना है देन मेक श्योर यू ट्यून इन टुमारो। अभी आई एम गोना प्ले यू वन रियली कूल ट्यून, दिस इज टू ऑल माई आसमीज, भाई बंधु शॉपकोटा एवरी वन, तो ये सारे गाने आपके लिए हैं। दिस इज शंकुराज कोनवर एंड शालमली खोलगड़े, ऑफकोर्स द वन एंड ओनली शालमली खोलगड़े, रियली फेमस बॉलीवुड सिंगर, कोलैबोरेटिंग ऑन होलो लोलो।

भाई ये अगला गाना अभी वसीम जी के लिए. अभी थोड़ी देर पहले मुझे वसीम जी की कॉल आई और वसीम जी कहते हैं आपने अभी जोया अख्तर का नाम लिया, मैं तो शॉक हो गया. मैंने कहा क्यों भाई, व्हाई, व्हाट इज द डील? तो उन्होंने बोला भाई हमारी फैमिली में भी एक जोया अख्तर है. तो आपने जैसे ही बोला जोया अख्तर, आई वॉज लाइक शॉक्ड. मैंने कहा ड्यूड, OMG, आपका नाम भी तो वसीम अख्तर है. वसीम अख्तर तो हमारे क्रिकेटर भी हैं, पाकिस्तान के बहुत ही फेमस. भाई कई बार क्या होता है, हमारे नाम इतने सारे कॉमन हो जाते हैं ना पूरे दुनिया में कि आपको पता भी नहीं चलता दैट यू आर शेयरिंग अ नेम विद समवन. सबसे फन फैक्ट मैं अपना बताती हूँ. जैसे मेरा नाम है, वैसे तो एवरीवन कॉल्स मी इपी द हिपी, लेकिन मेरा एक्चुअल नाम है इप्शिता रॉय. ठीक है, अब आप सर्च करोगे इप्शिता रॉय को फेसबुक पे और कम से कम 10-12 इप्शिता रॉय निकल आएंगी. एक तो यहीं पे कहीं पे अमेरिका में है मैडम, वो भी सिंगर है, मैं भी सिंगर हूँ. ले मैंने कहा यार ये तो मैं भी सिंगर हूँ, ये भी सिंगर है, व्हाट आर दी ऑड्स ऑफ दैट. बट FYI, आई थिंक आई एम अ वे बेटर सिंगर देन हर. तो एनीवेज आगे बढ़ते हुए ये नेक्स्ट गाना वसीम जी और उनकी वाइफ फरीदा जी के लिए और उनके साथ उनकी पूरी फैमिली, आई थिंक अभी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर गोइंग समवेयर. तो ये आप सब के लिए ये गाना.

0: मैं शाहरुख खान।
1: भाई वो शाहरुख खान तो मैं पृथ्वीराज कपूर। मैं चौहान बोलने वाली थी पर देन आई रिमेम्बर्ड कि चौहान तो भाई वॉरियर है और कपूर इज द एक्टर है ना। अगर आपको नहीं पता वो कहाँ से आ गया रैंडम, मैं शाहरुख खान वो गाने के एंड में ना दीपिका पादुकोण बोलती है मैं शाहरुख खान आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, नहीं वो नहीं बोलती बट अगर वो अगर शाहरुख खान है देन आई एम पृथ्वीराज कपूर मुगले आजम।